سفيها أو

يدعونها بين

هذا

0: और अगर तुम सफर पर हो और दस्तावेज लिखने वाला न मिल सके तो कोई चीज रहन बाकब्जा रखकर कर्ज ले लो, और अगर तुम में से कोई दूसरे को अमीन समझे यानी रहन के बगैर कर्ज दे दे तो अमानतदार को चाहिए कि साहिब अमानत की अमानत अदा कर दे, और अल्लाह से जो उसका परवरदिगार है डरे, और देखना शहादत को मत छुपाना, जो उसको छुपाएगा वो दिल का गुनाहगार होगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। तुम अपने दिलों की बात को जाहिर करोगे तो और छुपाओगे तो अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा, फिर वो जिसे चाहे मग़फ़िरत करे और जिसे चाहे अज़ाब दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई ईमान रखती ही, और मोमिन भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसके किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं, और कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों से किसी में कुछ फर्क नहीं करते, और वो अल्लाह से अर्ज करते हैं कि हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया, ऐ परवरदिगार हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है।
1: ला युकल्लम

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: शहीद थी वो बेपासे बलूचिस्तान में रतन सतना टे दौरान कंबा में आसमाबाद में ऑपरेशन टे दहशतगर्द मारजी वाया बारह शकी मान के हिरासत में वरतो वो केतरा ही था तबाह। पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्किया में कें एक हमलो टिन्हीं मुल्क हमलो समझो वो टिन्हीं मुल्क के तारीखी मका गडियल दिफाई मुआहदो कर सऊदी अरब के शहर मका मुकरम में टिन्हीं मुल्क जो सरबराह इजलास में मुआहदे से सयूं कई वयं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान वजी आजम शहबाज शरीफ ए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मके दिफाई मुआहदे से सयूं कई। परदेह वजारत के तर्जुमान है मुआहदे तहत टिन्हीं मुल्क दिफाई सहकार के हथी डींदा। मुआहदे तहत कें भी एक मुल्क से हमलो टिन्हीं मुल्क हमलो तस्वर किया वो। मुआहदे जो मकसद टिन्हीं मुल्क के दिफाई निज़ाम के मजबूत बनाना है।

वज़ीर-ए-आज़म पारां मके गडि॒यल दिफ़ाई मुआहिदो टिन भाइर इस्लामी मुल्कनि विच में दोस्ती अमुन ऐं सलामती जी गडि॒यल अज़म जो इज़हार करार। शहबाज शरीफ चयो आहे त फील्ड मार्शल जे अणथक महिनत इहो अज़ीम मक़सद पूरो करण में अहम किरदार अदा कयो। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान चयो आहे त गडि॒यल दिफ़ाई मुआहिदो सिक्योरिटी ऐं दिफ़ाई सहकार खे अॻिते वधाइण में मददगार साबित थींदो। गडि॒यल मनसूबनि खे हथी ॾियण ऐं दहशतगर्दी जे ख़ात्मे में पिणु मदद मिलंदी। सऊदी परडे॒ही वज़ीर फैसल बिन फरहान बि चयो आहे त सऊदी पाकिस्तान ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआहिदो टिन्ही मुल्कनि जी तरक़ी ऐं खु़शहालीअ जो सबबु बणिजंदो। मुआहिदे सां इलाक़ाई अमन खे हथी मिलंदी।

ईरान जंग जारी रखने की पोजिशन में ना है। आबन हरमुज भी जल्द घुर्ज वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो ईरान वट मुआदे का सवाल बो को गस्त ना है। ईरानी सदर मसूद पक्षगान है तो ईरान पैं मौके से हटो जंग बदर गाल जरिए हक हासिल करना चाहन था।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क
2: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिक्योरिटी फोर्सेज जूं केपी के बलूचिस्तान में फितना खवारिज खिलाफ कार्रवाइयूं ॾह दहशतगर्द मारिजी विया चार दहशतगर्द जख़्मी हालत में गिरफ़्तार फायरिंग जी ॾे वठि में पाक फ़ौज जो कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो ISPR मूजिबि दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारी इतलाह ते ऑपरेशन कयो वियो कार्रवाई दौरान सत दहशतगर्द मारिजी विया फायरिंग जी ॾे वठि में कैप्टन हमज़ा शहीद थी वियो ॿिए पासे बलूचिस्तान में रदुल फितना टे दौरान कंबीला ऐं आसिमाबाद में ऑपरेशन टे दहशतगर्द मारिजी विया केतिरा ई थाक तबाह सदर आसिफ़ ज़रदारी पारां शहीद कैप्टन हमज़ा अकराम खे भेटा पेश सदर चयो त क़ौम बहादुर पुटनि जे क़ुर्बानीनि जी कर्ज़ी आहे पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया मां कंहिं हिक ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते सम्झो वेंदो टिन्ही मुल्कनि तारीख़ी मका गॾियल तिफ़ाई मुआदो करे छॾियो सऊदी अरब जे शहर मका मुकरम में टिन्ही मुल्कनि जो सरबराह इजलास में मुआदे ते सहियूं कयूं वयूं सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान मके दिफ़ाई मुआदे ते सहियूं कयूं परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त मुआदे तहत टई मुल्क दिफ़ाई सहकार खे हथी ॾींदा मुआदे तहत कंहिं बि हिकु मुल्क ते हमिलो टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो तसवुर कयो वेंदो मुआदे जो मक़सदु टिन्ही मुल्कनि जे दिफ़ाई निज़ाम खे मज़बूत बणाइणु आहे वज़ीर आज़म पारां मके में गॾियल दिफ़ाई मुआदो टिनि भाइर इस्लामी मुल्कनि विच में दोस्ती अमुन ऐं सलामती जे गॾियल अज़म जो इज़हार करार शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त फील्ड मार्शल जे अणथक महिनत इहो अज़ीम मक़सदु पूरो करण में अहम किरदारु अदा कयो तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान चयो आहे त गॾियल दिफ़ाई मुआदो सिक्योरिटी ऐं दिफ़ाई सहकार खे अॻिते वधाइण में मददगार साबित थींदो गॾियल मनसूबनि खे हथी ॾियणु ऐं दहशतगर्दी जे ख़ात्मे में पिणु मदद मिलंदी सऊदी परॾेही वज़ीर फैसल बिन फरहान बि चयो आहे त सऊदी पाकिस्तान ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआदो टिन्ही मुल्कनि जी तरक़ी ऐं ख़ुशहालीअ जो सबबु बणिजंदो मुआदे सां इलाक़ाई अमुन खे हथी मिलंदी ईरान जंग जारी रखण जी पोज़ीशन में नाहे अबन हरमुज़ बि जल्द खुली वेंदो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान वटि मुआदे खां सवाइ ॿियो को गस नाहे ईरानी सदर मसूद पज़ीशन चयो आहे त ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ तां पोइ ते न हटंदो जंग बदिरां ॻाल्हियुनि ज़रिए हक़ हासिल करणु चाहियूं था वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सऊदी अरब जे शहर मकाबाद मदीने पहुची वियो पाकिस्तानी वक़्त सां गॾु मस्जिद नबवी में हाज़िर भरी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ रियाज़ुल जना में नफ़िल पढ़ी मुल्क क़ौम ऐं उमत लाइ ख़ुसूसी दुआऊं बि घुरियूं शहबाज़ शरीफ़ रोज़ा रसूल ते हाज़िरी भरे ज़ियारत जी सआदत बि हासिलु कई

0: फेसगंज में मोबाइल तोर भाव गोली होनी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।

0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 11:50 a.m. This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला बयार जो सोना यूरिया जो मोतिए जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मिटीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असां जे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

सिक्योरिटी फोर्सेज जूं केपी के ऐं बलूचिस्तान में फितन अल ख़वारिज ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं ॾह दहशतगर्द मारिजी विया, चार दहशतगर्द गिरफ़्तार। फायरिंग जी ॾेवट में पाक फ़ौज जो कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो। ISPR मौजूद दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारे इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो। कार्रवाई दौरान सत दहशतगर्द मारिजी विया। फायरिंग जी ॾेवट में कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो। ॿिए पासे बलूचिस्तान में रदुल फितना टे दौरान कंबीला ऐं आसमाबाद में ऑपरेशन, टे दहशतगर्द मारिजी विया, केतिरा ई थाक तबाह। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं मोहसिन नकवी पारां शहीद कैप्टन हमज़ा अकराम खे भेटा पेश। सदर चयो त क़ौम बहादुर पुटनि जे क़ुर्बानीनि जी कर्ज़ी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब जो दौरो मुकमिल करण बाद वापसि ॾह रवानो। वज़ीर आज़म खे मदीने जे गवर्नर एयरपोर्ट ते अलविदा कयो। वज़ीर आज़म ॾह रवानगीअ खां पहिरीं वफ़द सां गॾु मस्जिद नबवी में हाज़िरी भरी ऐं रियाज़ुल जिन्नाह में नफ़िल पढ़िया। शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल ते हाज़िरी भरे ज़ियारत जी सआदत बि हासिल कई। पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी में साॻी पघार ते कम कंदी रहंदी। पीपल्स पार्टी जिता हाराईंदी धांधलीअ जो इल्ज़ाम लॻाईंदी आहे। आज़ाद कश्मीर जे शहर हवेली में चूंड जलसे खे ख़िताब बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे राणा सनाउला चयो त आज़ाद कश्मीर जे मसइलनि खे हुकूमत ठहिण बाद तरजीह बुनियादनि ते हल कयो वेंदो। ईरान जंग जारी रखण जी पोज़ीशन में नाहे, आबन हरमस बि जल्द घुर्जी वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान वटि मुआदे खां सवाइ ॿियो को गस नाहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ खां पोइते न हटंदो। जंग बदिरां ॻाल्हियुनि ज़रिए हक़ हासिल करणु चाहिनि था। पंजाब जे शहर लाहौर में बरसात बाद रोड रस्ता पाणी हेठि, अंडर बाईपासिस बि बरसात पाणी सां भरिजी विया। शहर जे हेठनि वारनि इलाइक़नि में बि गोॾे जेॾो पाणी बीठल।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला बयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दानो छटाई करने में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
4: बहजो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
5: GFM 90.8

क्या करना है. तो अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो सवाल कुछ यूं होने वाला है. भाई देखा जाए तो कुछ लोगों के खानदान में ना ये एक रिवाज होता है कि वो अपने खानदान से बाहर जो ना वो शादियां नहीं करते. कोई उनको जो ना वो ऐसा नहीं होता कि भाई हाँ चले शादी हो जाए जहाँ भी हो जाए, लेकिन कुछ लोगों को इस चीज़ का बड़ा होता है कि भाई शादी होनी चाहिए तो खानदान के अंदर होनी चाहिए, खानदान से बाहर नहीं होनी चाहिए. तो मुझे आज ये सवाल जो है ना ये किसी ने बोला है कि भाई आप अपने लिसनर से पूछे. तो सवाल कुछ यूँ होने वाला है, उनके खानदान में ये रिवाज नहीं है कि भाई कहीं बाहर शादी हो, लेकिन उनको ऑप्शन ये दो ऑप्शन मिले. एक तो या तो आपने पप्पू का घर सेलेक्ट करना है या तो आपने मामू का घर सेलेक्ट करना है. तो मुझे आज आप ये बताएंगे कि शादी करने के लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन से होते हैं, या एक को ऑप्शन होगा ना, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, पुप्पो का घर या फिर मामू का घर? आपकी नजर में आपको क्या लगता है कि किस घर में जो है ना वो शादी सही तरीके से हो सकती है, पुप्पो का घर सही है या फिर मामू का घर सही है? और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो क्या करेंगे जी, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LR के सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 881 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब. आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है, पेज को फॉलो कर लिया करें. उसके अलावा आप जैसे ही आएंगे पेज पर तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइटिश एंड जी स्किन ब्यूटी शो के लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जैसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि पता चले कि आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं. और जनाब आप पोस्ट के साथ जो है ना मोहब्बतों का इजहार कुछ इस तरह कर सकते हैं. तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और अपने होने का एहसास दिलाते जाइए, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए. और इसी के साथ साथ जो टॉपिक है उसका जवाब आप मुझे बताएंगे. हाँ हंसी तो मुझे भी खैर बहुत आ रही है. आप बताइए जरा शादी करने के लिए ऑप्शंस जो है ना वो आप लोगों को, अगर खानदान में आपकी शादी हो रही है आप लोगों को बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिए जाते, बस आप लोगों के पास दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं, या तो आपने पप्पो के घर शादी के लिए हाँ करनी है या तो फिर आपने मामू के घर के हाँ जो है ना वो हाँ कर लेनी है. तो मुझे बताएं कौन सा घर जो है वो ज्यादा बेहतर हो सकता है, पप्पो का घर या फिर मामू का घर? और पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे. इसी के साथ साथ यहाँ पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, आपको इन दोनों में भी जो है ना सिलेक्शन करनी है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है. आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट लगाएंगे या फिर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे? और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये चीज आप याद रखिएगा. तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जनाब, जैसे कि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम है, व्हाइटिश ब्यूटी सोप है, व्हाइटिश फेस वॉश है, व्हाइटिश लोशन है, व्हाइटिश हेयर रिमूवल लोशन है, व्हाइटिश डॉक्टर पिंपल ट्यूब है एंड व्हाइटिश लवली ट्यूब है. उसके अलावा डी स्किन में आते हैं तो डी स्किन में आप लोगों को दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे बिल्कुल टॉपिक में बताया गया. तो डी स्किन में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है. तो ये दोनों जो है ना ऑप्शंस आपने सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट लगाना है. तफसील आप लोगों को मैं बताऊंगी कि भाई आपने कौन सा प्रोडक्ट क्यों लगाना है. इसी के साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो जनाब वेलकम. यहाँ पर आदिल हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, लिखते हैं कि बदतरीन खुशी वो है जो किसी के दिल को दुखाकर हासिल की जाए, दूसरों के आंसुओं पर हंसने वाले वक्ती खुश तो हो सकते हैं मगर कभी पुरसकून नहीं रहते. असल खुशी वही है जो इंसान अपने साथ दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट ले आए. किरदार की खूबसूरती दूसरों को खुश रखने में है, तकलीफ देने में नहीं. बिल्कुल जी आप सही कह रहे हैं. और उसके अलावा हमारे साथ सादिया कहती हैं, सलाम जी वालेकुम अस्सलाम, आई एम सादिया फ्रॉम कराची, गुड आफ्टरनून, वेलकम कहती हैं सादिया आपको. अखलाक बलूच हमारे साथ मौजूद हैं.

से लाल थोड़ी है बस अपने वास्ते फिक्रमंद है सब लोग यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है अपरों को काट दिया है उड़ान से पहले ये शौक

हिजर है, शो के जवाल थोड़ी है, मजा तो तब है हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है, जागना पड़ता है उठने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। वाह वाह वाह वाह, वेरी नाइस। और हैप्पी कहती आरजे, कल मैंने आपको बहुत मिस किया था, कल जुम्मा था, इतना जल्दी गुजर गया पता ही नहीं चला। मेरा दिल करता है जुम्मा 7-8 दिन का तो होना चाहिए। कुछ फील तो भाई, हाँ छुट्टी है, जुम्मा है तो इतना जल्दी गुजर जाता है। उसके अलावा यहाँ पर टाइम हो जाता है जी, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा पूरी पूरी 3 बजे तक, आपका हमारा साथ है, तो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए ताकि खूबसूरत हो सके।

0: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आज अपने
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए, बहुत अच्छे से जानिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप लोगों को बताया जा रहा है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके इस्तेमाल से आप लोगों को इतना जबरदस्त सा निखार मिलता है कि आप खुद ही कहते हैं भाई ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोई जादुई निखार तो नहीं है, क्योंकि इतना जादुई प्रोडक्ट ही बात है, इतना मेडिकेटेड फार्मूला है और उसके अलावा इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है ना कि आप देखेंगे तो कहेंगे भाई ही प्रोडक्ट पक ढो महंगो होंगे, पर कोई महंगो ना है ना कि तमाम बिल्कुल अफोर्ड करे सको था। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका तमाम जे हर स्किन ते सूट करने वालों प्रोडक्ट है, तमाम सुठी क्वालिटी, तमाम प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट है। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका भाई तैयार थे ला है वाइटामिन ई बी माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन तमाम चीजों एड थियल आहन डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। तमाम चौंदा तो बाबा ये नाला बुधी कर लगे तो हाँ वाकई अमीर नारो प्रोडक्ट हों तो बिल्कुल ये ही है। एडो जबरदस्त जबरदस्त चीजों ने जे अंदर एड थियल आहन। अगर तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पया या फिर तमाम इस्तेमाल करण चाहियो था तो तमाम बिल्कुल इस्तेमाल कजो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, हन के डॉक्टर जी निगरानी जे अंदर तैयार कयो वयो आहे। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जदी तमाम इस्तेमाल कना त तमाम के खबर पंदी बाबा वाकई तमाम का शे लगायो था। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम आए सो कि तमाम राजे टाइम इस्तेमाल करे सको था। उनका अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई जान डी स्किन ब्यूटी क्रीम हम लगाएंगे तो क्या हमारे ऑल स्किन टाइप के लिए, हमारी स्किन तो सेंसिटिव है तो क्या हम लगा सकते हैं, तो बिल्कुल जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डिजाइन इस तरह किया गया है, इस तरह तैयार किया गया है कि आपकी अगर स्किन सेंसिटिव हो तो उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है तो मेडिकेटेड फार्मूला तो आप ऑल स्किन टाइप के ऊपर लगा सकते हैं। और जनाब इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है। एक बहुत ही मयारी ब्यूटी फार्मूला है, ये आपके जल्द को नमी फराहम करता है, चेहरे को नरम मुलायम और ताजा रखने में मदद देता है। और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का बाकायदा इस्तेमाल आपकी जल्द की जो है ना बेरोनकी कम कर देता है, चेहरा ज्यादा साफ और रोशन नजर आना स्टार्ट हो जाता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब जितनी सारी चीजें हैं वो आप लोगों की स्किन को फ्रेश एहसास देने के लिए है और आपकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए है। तो रोजाना इस्तेमाल आपकी जल्द को कुदरती निखार और खूबसूरती में चमक फराहम करेगा। तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप रात के टाइम लगाइएगा सोने से पहले। लगाने से पहले एक और चीज है जो आपने करनी है, वो है डी स्किन फेस वॉश। बिल्कुल जनाब डी स्किन फेस वॉश को कैसे भूल सकते हैं। तो डी स्किन फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, डी स्किन फेस वॉश की भी अगर बात आती है तो ये भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश है जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है। अब आप ये बोलेंगे कि ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम क्या है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट सा चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे फायदा ये होता है आपकी स्किन को कि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हो जाती है, आपकी स्किन डीपली क्लीन हो जाती है और आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेट रहती है। तो ये इतने सारे फायदे लोगों को मिल सकते हैं जब आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश ये कि आप नाम लेकर तलब कर सकते हैं, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहां से नाम लीजिए। और ये जो आप बोलते हैं ना डी एस नहीं बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी आप लगाइए और साथ में आप स्किन को याद रखिए कि हाँ जी आपकी स्किन तो बिल्कुल वैसे ही, डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं आपके पास नंबर्स मौजूद होने चाहिए, जिन नंबर्स के ऊपर आप रابطہ कर सकें इजीली अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने के लिए। कोई मालूमात लेना चाहते हैं वो हासिल करने के लिए तो आपने डायल करना है 03-12-50-25-907। और इसके अलावा अगर दूसरा नंबर आप डायल करना चाहते हैं तो दूसरा नंबर है 03-273-8439-03-32-73-84-309। अब ऐसा है कि मैं अभी मुझे ये ख्याल आया जब आपको मैंने नंबर बताया तो महर इरफान सियाल साहब तो वापस आ चुके उमरा से, तो मैं सोच रही थी कि उनका नंबर दोबारा से अनाउंस कर ये पूछना पड़ेगा मुझे। तो अभी तो आप ये नंबर जो है वो डायल कीजिए और उसके साथ साथ मुझे जरा ये बताइए, आज जो हमने एक थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल पूछ लिया है आप लोगों से, जिसका आप लोग मुझे जवाब देने वाले हैं, कि कुछ लोगों के खानदान में ना ये चीज होती है कि वो अपने खानदान से बाहर शादियां नहीं करते, समझ रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर आप लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, आप लोगों ने भाई आपको ये ऑप्शन दिया गया कि आप खानदान के अंदर शादी कर सकते हैं, तो आप लोगों के पास दो ऑप्शंस है, आप पुप्पो का घर सेलेक्ट करेंगे या मामू का घर सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों ऑप्शंस में बताइए जरा बेस्ट क्या है, किसको ज्यादा वोट मिल रहा है वो मैं देखूंगी।
और ये हमारी एक लिसनर है, उनके तरफ से ये टॉपिक मुझे सजेस्ट हुआ है, तो उन्होंने जानना है कि भाई लिसनर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज है. तो देखिए आप क्या कह रहे हैं, और बाबा शादी शो कर जी, खर्च करण खाना रोके मुंह. असांजे फैमिली मेड़ो को सिस्टम आहे अल्हम्दुलिल्लाह. तू समझा, ओके. पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए जरा.

हमारे साथ यहाँ पर हैप्पी की थी आरजे। ऐसा लगता है ये आई थिंक मामू का घर बेहतर है और पर पप्पो का घर भी कम नहीं, वो भी अच्छी है। ये टॉपिक आंसर है, यानी आपने तो फिर मामू को सिलेक्ट किया ना, फिर ठीक है इसको हम जरा लॉ कर देते हैं। ओके जी, हमारी निदड़ी हमारे साथ मौजूद, कहती है हेलो स्वीटी, वेलकम टू शो, हेलो टू यू प्यारी। और उन खां अलावा सादिया तव गाने जी फरमाइश कई, मैं कोशिश क्या थी तवाजो गानों हलाइंदा सी। इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं, विलेट सोनो खां लाशारी मिरपुर खास से कहते हैं सुन रहे हैं बाजी सिदरा, वेलकम, आपको भी वेलकम कहा जाता है।

बाणी क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम अलैहि सलामत। ओ माय फेवरेट आरजी, बेटा मुस्कान कैसी हैं? माँ सब ठीक था, बता की आयो मजे में। अखलाक भाई कहते हैं अंसर मामा मामी जिंदाबाद। ओ जियो करे से। भाई आ चुके हैं सलाम अद्दा स्मार्ट हाजरा, कैसा आयो? खुश आयो? सफा मस्त मजे में तुम्हें के मन से जी। स्मार्टो को पां कहते हैं टॉपिक आंसर। मेरे ख्याल में शादी के लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि रिश्ता बुफो के घर में है या मामों के घर में। शादी जिंदगी का एक अहम फैसला है, इसलिए रिश्तेदारी से ज्यादा जरूरी है कि सामने वाला इंसान समझदार, नेक, जिम्मेदार और हमारे खानदान के लिए मुनासिब हो। रिश्ता कहीं से भी हो सकता है, लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए। यही मेरी नजर में एक समझदार फैसला है, समझदारी वाला फैसला है। ओके, एक चीज नोटिस करी है, चाहे हमारे जो बुजुर्ग है ना, हमारे जो घर के बड़े हैं ना, उन्होंने अपने खानदान में रिश्ते कराकर कितनी ही तल्ख चीजें मतलब जो है ना वो देख ली हैं, हासिल कर ली, अपने बच्चों को तकलीफें दे दी, लेकिन फिर भी उनका ये एक मानना होता है कि भाई शादी करनी है तो अपनों में करनी है। हाँ जी, पहले जो सबक सीखे वो कम नहीं थे। आगे में करनी है, अपनों में करनी है। ये चीज मुझे लगता है कि हर किसी के खानदान के अंदर पाई जाती है।

वाह सही वाह भलो गानो एंजॉय कयो पया। और चाचा खालिद कहते हैं दोनों घर सही नहीं है, बाहर करें शादी। मैंने अपनी बेटी और दोनों बेटों की शादी बाहर की है, अपनों में तजुर्बा नाकाम रहा बेटा से दो। हाने सुतल सूर न जगाए नी यो टॉपिक आंसर दिसो दिसो पेरा अगर यो मतलब आ हेता ही थेल त पेरा जको असा के टेस्ट करनो वो पांच में करनो है वो भलो सबक हासिल कदासी पो बाहर विंदासी ऐं सुठो अगरि ईअं हुजे त तव्हां स्टार्टिंग में ई जेको आहे न सुठो कोई फ़ैसिलो वठो। ऐं तव्हांखे इहा चीज़ ख़बर हुजणु घुरिजे त बाबा शादी जे लाइ जेको इंसानु सुठो हुजणु घुरिजे उहो पंहिंजनि मां आहे या फिर किथां ॿाहिरि आहे, इन चीज़ मां तव्हांखे फ़र्क़ु न पवणु घुरिजे। खैर असांजी ॻाल्हियुनि खे त इहो चयो वेंदो आहे बाबा ॿार आयो न तव्हांखे कहिड़ी ख़बर, इहे वॾनि जा फ़ैसिला आहिनि वॾनि ते छॾे ॾियो। बिल्कुलु जी तव्हांजा फ़ैसिला तव्हां ते छॾे ॾिनासीं। ऐं इन खां अलावा तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो, इहा त तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि मञी सघो था न। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं डी स्किन फेस वॉश आहे जेको तव्हां इस्तेमालु कंदा ऐं पंहिंजी ख़ूबसूरती खे सफ़ा नेक्स्ट लेवल ते वठी वेंदा। जब भी मैं कोई शादी वाला टॉपिक रखती हूँ ना तो मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि गाने भी शादी वाले होने चाहिए। So,

0: हजार खान जो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह गुड शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। निदली कहते हैं कि हम दोनों जवाब सुनेंगे बस। हाँ जी ठीक है, अच्छा मस्त आइडिया है। और उनके अलावा हमारे साथ ही सादिया कहती है टॉपिक ये अपनी अपनी पसंद की बात है। हाँ वल्लाही मुदा ऐसा कहते हैं टॉपिक आहिंद भाई सही कौन पर वरी भी असां मामू जी घर के सिलेक्ट करना सी। ओह पप्पो को देखे अभी तक वोट नहीं मिला एक भी नहीं। ये बहुत बुरा है।
1: मस्त मौज मचे थी, मटन सा मस्त मौज मचे।
0: ओके जी, अब्दुल गफार भाई हमारे साथ है, खुश आमदीद कहते हैं प्यारे भाई को। और हाले सुल्तान हमारे साथ है, हेलो वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं हाले सुल्तान आप कैसी हैं? कहती हेलो सिद्रा, वो सॉन्ग भी मजे के होते हैं जो समझ नहीं आते, अभी आपके बैकग्राउंड में चल रहा है, समझ नहीं आ रहा बट मजे का है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे हाले सुल्तान का नाम देखकर ना मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कोई ड्रामा है, जैसे आजकल के नामों के एड नहीं आते। देखिए आज रात 8 बजे हाले सुल्तान बिल्कुल वैसे ही

ना बाबा ला बना दे परफ्यूम का असा पहिरियां ई इहे जेके न सटियल आयो इन्हनि जा सो खैर इन ॻाल्हि खे थोरो डिस्क्लोज अच्छा मैं जो है ना एक बात सोच रही थी आप लोग जो है ना इस टॉपिक के ऊपर जवाब दें तो जरा सोच समझ के दीजिएगा ठीक है और उसके अलावा अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिएगा और इसके अलावा अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए वहां से नाम लेकर तलब कीजिएगा क्योंकि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो लाजमी है कि आप जो है ना नंबर्स आपको बता रही हूं उनके ऊपर रब्ता किया बिल्कुल नंबर्स के ऊपर रब्ता करिए अपने

एक्मी जर्नल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराइए और सुना आप इस्तेमाल करते जाए, क्योंकि खूबसूरती यहीं से स्टार्ट होगी कि आप जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का यूज करना शुरू करें। ओके, पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें मेरे बिना कहे। क्यों इतना कहलवाते हैं।

राजा सूफियान अहमद हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम सूफियान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है। राजा खालिद कहते हैं डी स्किन क्रीम वालों का लोशन अवेलेबल, डी स्किन का नहीं लेकिन व्हाइटिश का लोशन मौजूद है, तो आप व्हाइटिश का लोशन ले सकते हैं।

टमाटो गोपाल जैसी कोई बात नहीं है। किशोर भाई वो यही हमारे आसपास हैं, बस ढूंढिए आप खुद, मैं नहीं बताऊंगी।

अच्छा, ये तो आप चाचा कह रहे ना कि उसको बोलें कि दोनों जगह मना कर दे। अब उनके खानदान में ये चीज है कि भाई आपने खानदान में ही शादी करनी है, तो उसको दो बस ये ऑप्शन मिल गए कि या तो पप्पो के घर हाँ कर दे या तो मामू के घर हाँ कर दे। तो बेचारी बड़ा फंस गई है वैसे ये थोड़ी अजीब सी बात है, कह भी क्या सकते हैं। अच्छा हैप्पी कहती है आरजी, अगर कोई किसी को पसंद करेगा तो वो ये दोनों ऑप्शंस चूज नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है, और ये जो है ना कर किसी की सोच पे डिपेंड करता है। आप समझ गई ना, मैं थोड़ा थोड़ा समझी। अगर पसंद ना करे तो फिर उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं ना, तो फिर इन दोनों में से किसी को चूज करना पड़ेगा, ये लग रहा है मुझे।

हाँ जरवार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहा जाता है। सादिया कहती है मैं समझ गई, अच्छा है। और दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। चंदा जाने बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं स्वीटी कैसी है?

सुनाओ, क्या बात है, बिल्कुल जी आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अच्छा ये ना एक चीज है भाई, सदियों से ये चीज चलती आ रही है, हमें लग रहा है कि हम जो है ना, यानी कि हम जब बुजुर्ग बनेंगे तो इस रिवाज को, रस्म को जरा साइड पे रखेंगे, वरना जो हमारे बुजुर्ग है ना उनके लिए भी सबसे पहला ऑप्शन जो है ना वो पांजा है, पांजा हिकड़ी जिसका ये कहावत आए बाबा त पांजा कीअं चवंदा आहिनि, पांजा मारे शाम छलींदा आहिनि, अलाए कीअं मतलब ये हिकड़ी कहावत आहे मूं ॿुधी आहे, तव्हां हिनखे ज़रा मतलब सही कयो या कहावत कीअं आहे। मां हिते वठां थी जनाब न्यूज़ ब्रेक, हुनखां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे, मोटी जल्दी तव्हां ॾे अचूं था, तव्हां करे न वञो हिते वेठा हुजो, ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटूं था। White Ash and D Skin Beauty Show is sponsored by White Ash Beauty Products and D Skin Beauty Products.

अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

पीपुल्स पार्टी वफ़ाक में साॻी पघार ते कम कंदी रहंदी। उगती गणप कंदड़नि जी गणप ऐं पाण बि सिधा थी वेंदा। अवाम पाकिस्तान जो मालिक आहे। कश्मीर ऐं पाकिस्तान जे तालुक खे केर बि ख़तम नथो करे सघे। पाकिस्तान कश्मीर खां सवाइ मुकमिल नाहे। कश्मीर में ईंदड़ हुकूमत नवाज़ लीग जी हूंदी। आज़ाद कश्मीर जे शहर बाग में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनावला चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत लाइ सादी अक्सरियत हासिल करे वरिती आहे। ब भाङे टे जी अक्सरियत लाइ रुगो 6 सीटूं घुर्बल आहिनि। जेके बि खटी वठंदासीं पीपुल्स पार्टी जितां हाराईंदी धांधलीअ जो इल्ज़ाम लॻाईंदी आहे। आज़ाद कश्मीर जे मसलनि खे हुकूमत ठहिण बाद तरजीह बुनियादनि ते हल कयो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सऊदी अरब जो दौरो मुकमल करण बाद वापस ॾेह रवानो। वज़ीर आज़म खे मदीने जे गवर्नर एयरपोर्ट ते अलविदा कयो। वज़ीर आज़म ॾेह रवानगीअ खां पहिरीं वक़्त सां गॾु मस्जिद नबवी में हाज़िरी भरी ऐं रियाज़ुल जना में नफ़िल पढ़िया। शहबाज़ शरीफ रोज़ा रसूल ते हाज़िरी भरे ज़ियारत जी सआदत बि हासिल कई। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया विच में थियल टे रुकनी दिफ़ाई मुआदे खे मुल्की तरक़ीअ जे अहम कामयाबी करार ॾेई छॾियो। मके दिफ़ाई मुआदे खे मुमकिन बणाइण ते वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जी साराह। बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त दिफ़ाई मुआदो पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल जी ज़मानत आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके में खारजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन सत दहशतगर्द मारिजी विया। फायरिंग जी ॾेवट में पाक फ़ौज जो कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो। ISPR मूजिबि दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारी इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो। कार्रवाई दौरान 7 दहशतगर्द मारिजी विया। फायरिंग जी ॾेवट में कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो। सदर आसिफ़ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं घरू मोहसिन नक़वी पारां शहीद कैप्टन हमज़ा अकराम खे भेटा पेश। सदर चयो त क़ौम बहादुर पुटनि जी क़ुर्बानीनि जी कर्ज़ी आहे। शहबाज शरीफ चयो त क़ौम शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जी थोराइती आहे। दहशतगर्दनि खे ख़तम कयो वेंदो। ईरान जंग जारी रखण जी पोज़ीशन में नाहे। आबना हरमुज़ बि जल्द घुर्ज खुली वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान वटि मुआदे खां सवाइ ॿियो को गश्त नाहे। ईरानी सदर मसूद पज़ीशान चयो आहे त ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ तां पोइते न हटंदो। जंग बदिरां ॻाल्हियुनि ज़रिए हक़ हासिल करण चाहियूं था। 5 जे शहर लाहौर में बरसात बाद रोड रस्ता पाणी हेठि अंडर पासिस बि बरसात पाणीअ सां भरिजी विया। शहर जे हेठनि वारनि इलाइक़नि में बि गोॾे जहिड़ो पाणी बीठल। कराची जे नौजवान मीर रज़ा जे मौत जो कारण मालूम करण लाइ कबरकुशाही मढ़ जा जुज़ा वरिता विया। मीर रज़ा जा वारिस ऐं वकील बि कब्रिस्तान में मौजूद। मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त मेडिकल बोर्ड जी जोड़ जक मां मुतमिन आहियूं। वकील जबरान नासिर चयो त मामले में असांजी ॻाल्हि ॿुधी वई आहे।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोतिए जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
5: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं
4: DAFM 88
3: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

मिल रहा है। व्हाइट एज का हेयर रिमूवल लोशन है जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर पाए जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जो भी आपको लगे कि ये प्रोडक्ट तो हमारे हिसाब वाला प्रोडक्ट है, ऐसे तो हमें लगाना ही चाहिए, तो बिल्कुल आप उसे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आप मार्केट जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या परचेज करने जा रहे हैं और आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि आप लोगों की स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर एवोकाडो है, एलोवेरा है, मिल्क है, और इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाती है, फेयर हो जाती है, आपकी स्किन को प्रोटेक्शन भी मिलती है और साथ ही साथ आप हमेशा खूबसूरत बने रहते हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है। आपकी जल्द को नरम मुलायम और तरताजा बनाने में मदद देती है। अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं रोजाना तो आपके चेहरे की जो खुश्की है, दाग धब्बे हैं, बेरोनकी है, ये तमाम चीजें कम हो जाना स्टार्ट हो जाती है, जबकि आपकी जल्द ज्यादा साफ और चमकदार महसूस हो जाती है। और जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम में जनाब आप जानते हैं कि खास और खुसूसी अज्जा मौजूद है जो कि बिल्कुल नेचुरल है, आपकी हिफाजत करेंगे स्किन की और कुदरती खूबसूरती को उजागर भी करेंगे। तो रोजाना इस्तेमाल से आपका चेहरा फ्रेश हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा और आप अपने आप को देखकर कहेंगे कि आए हाय ऐसे वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइट एज ब्यूटी सोप मिल रहा है और व्हाइट एज फेस वॉश मिल रहा है। ये दोनों चीजें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोप इस्तेमाल करते हैं या फिर आप फेस वॉश लगाते हैं, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि लोग अगर मैं पूछती हूँ ना तो लोग कहते हैं कि बाजी के साथ साबुन हणंदा आहियूं, बाजी के साथ फेस वॉश हणंदा आहियूं, त हिन दफ़े बाजी तव्हां चला ॿई चीज़ूं खणी आई आहे तव्हांखे का बि यानी कि बहानेबाज़ी न करणी पवंदी। तव्हां साबुन हणंदा आहियो त तव्हां व्हाइट एज ब्यूटी सोप लॻाईंदा, तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा त व्हाइट एज फेस वॉश लॻाईंदा। बिल्कुल जी बच्चों, हर तरह से आपको जो है ना वो घेर लिया है कहीं से भी जाने नहीं देंगे। और अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए जी, इतने अच्छे मार्केट में जो है ना वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो इनसे आपको फायदा उठाना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि भाई आप लाजमी सारे लोग ही इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों को ऐसा होता है ना कि भाई हम नाइट क्रीम में नहीं लगा पाते, अभी हमारी उम्र नहीं हुई है, तो आपके लिए व्हाइट एज लवली क्रीम मौजूद है और उसकी क्या खास बातें हैं वो बताते हैं। लेकिन साथ साथ आप व्हाइट एज का फेस वॉश और सोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाइट एज का फेस वॉश अगर आप लोगों को बताया जाए तो ये विटामिन सी से तैयार किया गया है इसको, और इसके अंदर जो है ना विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई भी मौजूद है, और ये इतना ग्लोइंग फेस वॉश आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है एंटी एजिंग के लिए। ये बहुत ही क्रीमी सा फेस वॉश है, जब आप व्हाइट एज फेस वॉश का यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे आज देखा जाए तो फेसबुक पर एड जो लगाया है वो भी व्हाइट एज के फेस वॉश का ही है। आप देखकर समझ गए होंगे कि ये कितना अच्छा और कितना जबरदस्त क्वालिटी का फेस वॉश है। तो आप भी इस्तेमाल कीजिए ताकि आप लोगों को भी खूबसूरती मिले, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो देन आपके पास नंबर मौजूद है 03-12-50-25-907 और दूसरा नंबर है 03-27-38-45-09 03-27-38-43-09। ये दोनों नंबर्स आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी व्हाइट एज के तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं। भाई प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे तभी तो आपके लिए आसानी होगी ना, कि बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाएंगे, वहां से आप नाम लेकर तलब करेंगे। तो नाम लेकर तलब कीजिए अपने करीबी जनरल स्टोर्स पे और इस्तेमाल कीजिए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। मेरे पास आपके बहुत सारे मैसेजेस जमा हो चुके हैं, यहाँ पर किसी ने मुझे अहमद मुगल के गाने की फरमाइश कर दी, तो अहमद मुगल के गाने सेलेक्ट करने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, क्योंकि मैं समझ नहीं पाती हूँ कि अहमद मुगल के गाने कौन से लगाने हैं प्रोग्राम में, इतने दुखी होते हैं। तो ये वाला गाना अहमद मुगल का हमने लिस्ट में लगा लिया है, हमें एक स्वीट सी लड़की ने फरमाइश कर दी थी, तो मैसेज आएगा तो उनको शामिल प्रोग्राम रखा जाएगा, लेकिन ये गाना उनको डेडिकेट करते हैं।

ऐसा कहते हैं कि वडन के छाके जे बाबा मुंह त असा के देणो पंडो हा कि हा हकीकत आ वैसे पोवरी चोंदा बाबा नसीब तस नसीब तस बच्चे ने जान अब्दुल गफार हमारे साथ अब्दुल गफार केसर भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको खुश आमदीद के साथ साथ मैं दिल की थी ओ हो कौन सी चैनल पर ये ड्रामा आता है अभी ये डिसाइड नहीं हुआ बस हमने प्रोमो बना के रखा है अच्छा आदिल कहते हैं कहीं पर भी इंसान शादी करे इन दोनों के घर में नहीं करनी चाहिए सही है भाई ओके सुफियान भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं

अच्छा जिनकी शादी हो चुकी ना, ये गाना उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आप खुश मत हो, एक दफो धूल वधी गया ना हाँ बस के हाँ तो बस वाइटिश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर सही है। अरे सुमाटू गोपां कहते हैं पांचा मारे पोई भी शाम में रखना है ने। हाँ वो सही दा प्यारा हो जो ना तो मारे नहीं जो। और दिया परी हमारे साथ, दिया परी कहती है अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। मैं आपकी साइलेंट खामोशी को तोड़ मरोड़ के आ गई, साइलेंट लिसनर है कहती है। स्वागत नहीं करेंगी मेरा दिया परी, आपका ऐसे दिल से स्वागत कहा जाता है। और आप बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रही, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे प्यारे प्यारे लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते और कहते हैं हे असा तक बुध ना आयो पर शामिल न थी ना आयो तो तवा जो मोहब्बत हुआ है बाबा दिया परी थैंक यू। और जी आदिल तवा जवाब दिनो आए ओ हिडू वडू जवाब दिनो धवला डसी करे चलो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। ओके कहते हैं कि लड़का या लड़की की शख्सियत सबसे अहम ये है कि सामने वाला इंसान कैसा है, इज्जत करता है, समझदार है, दीन और इखलाक ठीक है, नाम मामू हो या पुप्पो फर्क नहीं पड़ता, और फैमिली का मिजाज और हाँ मिजाज भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। कहते हैं कि मामू के घर पहले से जान पहचान है, रस्म और रिवाज सोच स्टेटस का अंदाजा है, रिश्तेदारी की वजह से रिश्ता निभाने का प्रेशर भी होता है, पुप्पो के घर नया खानदान वहाँ एडजस्ट होने में वक्त लगेगा, लेकिन अगर उनके उसूल तुम्हारे घर से मिलते हैं तो कोई मसला नहीं। कहते हैं कि घर का नाम नहीं लोग देखो, जहाँ इज्जत दीन समझ और इखलाक बेहतर लगे वहीं रिश्ता करो, चाहे वो मामू हो या पोपो हो। सही है।

बिदड़ी ने कहा है मतलब पप्पू को कोई वोट नहीं दे रहा, अभी तक तो नहीं मिला। अच्छा दिया पढ़ी कहती है मेरे लिए सॉन्ग प्ले कर रही मास्टर मंजूर का डेडिकेट अली मुर्तजा अंसारी। क्या बात है, अली मुर्तजा अंसारी नजर नहीं आ रहे, वैसे वो कहाँ गायब है। मेरी आहों का तेरे दिल पे असर को। एक बहुत अच्छा मास्टर मंजूर का गाना लगाएंगे आप दोनों के लिए, ठीक है। वैसे दिया आप तो जानती हैं, आप हमारा प्रोग्राम सुनती हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो बताइए जरा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस्तेमाल कर रही हैं या फिर अभी सोच रही हैं।

जी क्या बात है अख्तियार संदीप भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। जाम तालिब सोलंगी हमें सुन रहे हैं मोरो से। ओके जी भाई जान को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। अख्तियार सिंधी आपने सलाम दिए हैं रिजवान साहब, सुमेरा बाची और रुखसार की नाम। अच्छा सादिया थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं।

कौन से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जल्दी से बताइए. आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हुए या अभी तक नहीं. अगर अवेलेबल नहीं हुए तो जो नंबर आपको बता रही हूँ उनके ऊपर रब्ता जरूर किया करें. कॉल करें या फिर मैसेज करें उनको बताएं भाई जान हमारे एरिया में नहीं मिल रहे व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ताकि आप लगा सके. आपके लिए भी आसानियाँ आपके आस पास जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए भी आसानियाँ हो जाएंगे. तो जल्दी से अवेलेबल कराइए इस्तेमाल करती जाइए और खूबसूरती को जरा वेलकम करते जाइए. टाइम हुआ है जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाया जाए उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं. तो सुनती रहिए इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स.

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट.

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर नीह जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network, सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

प्रोडक्ट लगाए तो मां हिकड़ी चीज तमा सबनी के चवनम तो तमा पांजे स्किन जे हिसाब सा कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर पांजे स्किन के दिसंदा कयो तो तमा जी स्किन केडी टोन जी आ तो कुछ मानो जी स्किन काफी सेंसिटिव हुंदी आ आई नठो वने त एड़ा प्रोडक्ट मार्केट में खोड़ सारा हुंदा है जे के तमा जी स्किन जे हिसाब सा तैयार थेल नायन हुंदा उन जे अंदर केमिकल हुंदो आ मानो जे के लगाइंदा अगर उन जे स्किन ते को प्रोडक्ट सूट करे तो हकीकत ना तो ता जे स्किन ते भी सूट के छो तो तमा जो स्किन टोन जे को उन जे स्किन खा चेंज हुंदो आ तो तमा जला एड़ा प्रोडक्ट मार्केट में अची वया जे के ऑल स्किन टाइप जे लाया है अगर तमा जी स्किन सेंसिटिव वा ऑयली या ड्राई या नॉर्मल या कॉम्बिनेशन टाइप वा हर स्किन जी मथा तमा वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करे सगो था सो बिल्कुल वाइट एश लवली क्रीम जे तरफ अगर अचूं था वाइट एश लवली क्रीम एतरी त जबरदस्त क्रीम आए हिकड़ो फेयरनेस फार्मूलो आए यानी कि फेयरनेस क्रीम जेका हुंदी आहे उन जी नीड त मूंखे लगे तो हर एक माण्हू खे ज़रूरी हूंदी आहे ऐं वाइट एश लवली क्रीम उहा क्रीम आहे जेका तव्हां लॻाए पाण खे मिंट में रेडी करे सघो था ऐं वाइट एश लवली क्रीम जेका आहे हिकड़ो फेयरनेस फार्मूलो आहे ऐं रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन सां भरपूर आहे हिन जे अंदरि 30 वाइटमिन जा कैप्सूल एड थियल आहिनि ॻाल्हि हिते रुकजी नथी हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि एड थियल आहे यानी अलॻि सां तव्हांखे सनस्क्रीन वठण जी ज़रूरत न पवंदी बस तव्हां वाइट एश लवली क्रीम वठो उन जे अंदरि तव्हांजे लाइ सभु चीज़ूं जेके आहिनि डिज़ाइन थियल आहिनि सभु चीज़ुनि जो ख़्याल रखियो वियो आहे ऐं वाइट एश लवली क्रीम जेके तव्हां घर जो हर हिकु माण्हू लॻाए सघे हर हिकु माण्हू वटि पंहिंजो वाइट एश लवली जो ट्यूब हुजणु लाज़मी आहे बसि तव्हां काॾे वञो तव्हां मिंट में लॻायो वाइट एश लवली क्रीम ऐं तव्हां रेडी थी वेंदा सो तव्हां पढ़ो था तव्हां पढ़ायो था तव्हां वटि कोई जॉब आहे या फिर तव्हां काॾे अर्जेंटली वञो था कोई अहिड़ो सॾु अची वञे थो कोई अहिड़ो तव्हांजे घर इवेंट आहे जो तव्हांखे जल्दी वञिणो पवे थो ऐं तव्हां वटि जेको आहे न मेकअप तव्हां कंदा त गर्मी में वैसे मेकअप सूट नाहे कंदो त तव्हां वाइट एश लवली क्रीम जो थोरो मक़दार पंहिंजे चहिरे ते लॻाए छॾींदा त तव्हांजी स्किन ते ख़ूबसूरती बि अची वेंदी तव्हांजी स्किन जी प्रोटेक्शन बि थींदी छो त तव्हांखे बिल्कुलु ख़बर आहे त वाइट एश लवली क्रीम जे अंदरि सनस्क्रीन बि एड थियल आहे सो वाइट एश लवली क्रीम हिकु फेयरनेस फार्मूलो आहे तव्हांजे घर जा ॿार बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई लॻाए सघे थो बाबा ज़रूरु हिन मां फ़ाइदो हासिल कजो इन खां अलावा जिन माण्हुनि चेहरे ते वरी खोड़ सारा एकनी अची वेंदा आहिनि दाणनि तव्हांखे परेशान करे विधो आहे त बाबा तव्हां छो परेशान आहियो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तव्हांजे लाइ मार्केट में अवेलेबल आहे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तव्हांजे न सिर्फ़ एक्नी जो इलाज आहे न सिर्फ़ तव्हांजे एक्नी खे ख़तम करण जे लाइ बल्कि तव्हांजे एक्नी सां गॾो गॾु तव्हांजे चेहरे जा निशानात हुजनि तव्हांजे स्किन ते जेके मार्क्स अची वेंदा आहिनि तव्हांजे स्किन ते कोई निशान आहे को सड़न जो निशान आहे को कट जो निशान आहे केॾा बि ज़िदी निशान नंढपण खां तव्हांजे स्किन ते को निशान आहे उहो बि ख़तम थी वेंदो छो त डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब हिकिड़ो मेडिकेटेड फार्मूलो आहे आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे हिन जे अंदरि कुल जेके न जड़ी बूटियूं एड थियल आहिनि तव्हांजे ऑल स्किन टाइप जे लाइ यानी कि हर स्किन ते सूट करण वारो प्रोडक्ट आहे इंतहाई जबरदस्त क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे मेडिकेटेड फार्मूलो सो जंहिंजो नालो आहे बाबा डॉक्टर पिंपल ट्यूब सो तव्हांजे एक्नी जे लाइ सफ़ा हिकु नंबर अथव एक्नी ख़तम कयो एक्नी जा निशानात ख़तम कयो ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब खे इस्तेमालु कयो हाणे इहो बि इहा बि चीज़ अची वञे थी त तव्हां इस्तेमालु कीअं कंदा त इस्तेमालु करण जा तरीक़ेकार तमामु आसान आहिनि तव्हांखे छा करिणो आहे सभ खां पहिरियां पंहिंजो फेस वॉश कंदा तव्हां उन खां पोइ तव्हां सुबुह जो बि लॻाईंदा तव्हां राति जो बि लॻाईंदा यानी कि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तव्हां लॻायो था त तव्हांखे सुबुह जो भी लगाना है तुम्हारे रात जो भी लगाना है अगर एकनी सफ़ा घणा आहिनि त पोइ तव्हां जेको आहे सो टे मरतबा लॻाए सघो था ऐं अगरि वाइट एश लवली क्रीम आहे त वाइट एश लवली क्रीम खे तव्हां जेमहिल बि दिलि चवे तंहिंमहिल लॻायो बसि लॻाइण खां पहिरियां पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कंदा कयो सो ही उहे तमामु प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हांखे आराम सां मार्केट में मिली वञनि था ऐं उहे प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हांजी स्किन जे लाइ तमामु घणा फ़ाइदेमंद आहिनि सो तव्हां वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जेके बि आहिनि तव्हां इस्तेमालु करे सघो था जेको प्रोडक्ट तव्हांखे लॻे त बाबा ही त मुंहिंजे लाइ तयारु थियो आहे त तव्हां उनखे सिलेक्ट कयो तव्हां वठी अचो ऐं तव्हां इस्तेमालु करणु स्टार्ट कयो वैसे भी तव्हांजे लाइ सुठा प्रोडक्ट सिलेक्ट करण जेको हूंदो आहे न तमामु अॼुकल्ह जे दौर में मुश्किल थी वियो आहे त सुठा प्रोडक्ट तव्हांखे मां ॿुधायां थी बसि तव्हां मार्केट वञो परचेज़ कयो ऐं सुहिणा थी वञो

प्यार के गाने की किसी ने फरमाइश करी तो ये गाना उनको डेडिकेट जाता है। बिल्कुल जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे खास अब्दुल्ला भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम बाजी, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ ही साझा खालिद पेनर पर आपको भी वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। गाना आपका ऑन द वे है, आप थोड़ा सब्र कीजिए। उसके अलावा मकसूद मल्हा हमारे साथ ही, आदाब अदा, वालेकुम अस्सलाम। और मंजूर नहीं बल्कि मास्टर मंजूर का गाना आपने सुना होगा। और ये हमारे साथ है सिद्रा। अच्छा हैप्पी है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कहती आप छुट्टी वाले दिन आपका कैसा गुजरता है? छुट्टी वाला दिन मेरा इतना जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि मैंने किया क्या और मैंने करना क्या था। तो मुझे लगता है कि बस पूछना ही नहीं चाहिए। मिर्बू खास अब्दुल्ला भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम नाइस है। टॉपिक शादी, मामों के घर कहनी चाहिए और बाजी सॉन्ग सुनाओ तो मजा आ जाए। गाने आपको बिल्कुल सारे मजेदार सुनाए। उनके अलावा चाचा खाले तवां जो मैसेज बिल्कुल मूड रिसीवर तो हुआ है। ये हमारे साथ नवाब शाह खान सूर्या बिरोही कहते आज तवां जे प्रोग्राम में आया आई हूं। इहो न सोचो त डेली ईंदासीं, तव्हां जो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो, इहो ई घणो आहे। हा बिल्कुलु इहो घणो आहे, मां बि सोचींदी आहियां। तव्हां ॿुधो था इहो ई तव्हांजे मथां बाबा, मुंहिंजे मथां अहसान आहे त तव्हां बर्दाश्त कयो था मूंखे। सही ॻाल्हि आहे। ऐं तव्हां गानो चयो आहे निघत नाज़ जो, ऐं ली निघत त मूं रखी कोन्हे का लिस्ट में। चलो निघत सुभाणे ॿुधी वठंदासीं, न त असां शाम वारे प्रोग्राम ॿुधी वठंदासीं। सो थैंक यू सो मच सूर्या बिरोही। ये मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। इरम हमारे साथ है, मुझे प्यारी दिलबर दोस्त जानी, मैं तो शादी शुदा हूँ, अब मैं क्या ही जवाब दूँ? नहीं, आपको पता होगा कि आपने क्या जवाब देना है। आपको क्या लगता है कहाँ करनी चाहिए?

लीता इलाज करे पर तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगायो तव्हां सोणा थींदा तव्हांखे इलाज करण जी ज़रूरत न पवंदी अच्छा ये मौजूदी वालेकुम असलाम आप ही कैसी हो अपनों में अपनों ने ना हमें बहुत

प्रोडक्ट्स लगाइए। कामरान लगारी हमारे साथ, कहते हैं सिद्रा बाची हमें सॉन्ग सुनाए पाकिस्तानी ड्रामे का, यार तो यार होता है। डेडिकेट कुर्बान अली मीर हसन लगारी, थैंक यू। अच्छा भाई, आपको गाना मैं सुनाऊंगी 5 बजे वाले प्रोग्राम में, ठीक है? आप लाजमी मुझे ज्वाइन कीजिएगा। और उसके अलावा कहते हैं सलाम अलैकुम, आपका शो हमें बहुत अच्छा लगता है, आपके शो का इंतजार होता है और आपका शो बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच कामरान लगारी भाई, आपको वेलकम कहते हैं। आप हमें मोरो से सुन रहे हैं, मोरो में भाई आपके लिए व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो आप जाइए और परचेज कीजिएगा, ठीक है? अल्ताफ कोसम में सुन रहे हैं, जाग जानी चाचू कहते हैं प्लीज ओल्डी गोल्डी गाना लगाइएगा। और कहते हैं डेडिकेट यू एंड अजरा खोसो रिजवान साहब, ओके। और मोहम्मद शरीफ कुंभ हमारे साथ है, मोहम्मद शरीफ कुंभ विलेज नबी बख्श कुंभ मातली कहते हैं मामों के घर शादी करनी चाहिए भाई, इतने मामों को वोट क्यों मिले हैं? एक भी बेचारी पुप्पो को वोट नहीं मिला, हाय। ये सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कसम। गुड मौजूद है सलाम बाजी जुल्फकार अली खोड़ो हमारे साथ फ्रॉम आकिल कहते हैं बाजी सिद्रा शो नाइस तवाजो सब का बेहतर रिश्तो चाचानो आ चाचानो घर अफजल आ जे मोहब्बत में मजो नाए त धारिया उन का बेहतर आ ओके ओके जुल्फकार भा थैंक यू तुम्हारे से गुड मौजूद है। अच्छा ये अल्ताफ खोसो जाग जानी चाचू हमारे साथ है, वही मैसेज आपने दोबारा शेयर कर दिया उसके लिए थैंक यू। और मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ है, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला महर भाई जान। और हमारे साथ है साइमा मीर कहती कभी कभी दिल के सुकून के लिए सारा जहां नहीं बस उस एक इंसान की जरूरत होती है जिसे मोहब्बत हो। अस्सलाम वालेकुम मक्खन जैसी आरजे, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी? मैसेज इतना था या फिर मुझे मिसिंग पार्ट मिला है?

भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना सुन रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रोग्राम सुन रहे हैं वाई टेस्ट एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है वाई टेस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अरे सैमा मेरी कहती है वाह जी वाह सिद्रो, क्या सिंधी गाना प्ले किया है, छुपा के रखना अपने वैसे कौन से वाले की बात कर रही हो। और कहती टॉपिक जी बुआ हल्लड़े हिकड़ो वोट तो फाइनली बुआ के मिलियो, माशाल्लाह माशाल्लाह नजर न लगे खुशियाँ। अच्छा ये हमारे साथ है साइमा बीर, तमा जो मैसेज आ दिल तू चवे सिद्रा आई सिद्रा आई निदड़ी भी टॉपिक थी रोशनी विजन सलाम बीमार निदड़ी के, बीमार न उदास निदड़ी के आई बिल्कुल निदा के चौथा बाबा तान टॉपिक जो जवाब दियो। अरीबा हमारे साथ है प्यारी आप ही जवाब है मामू का घर, मेरी इरम ने भी अपने मामू के घर को सिलेक्ट किया तो मैंने भी अपने मामू के घर को सिलेक्ट किया। अच्छा क्या बात है।

ओके जी, गाना खत्म हो गया और नेक्स्ट गाना खुद ही चल गया। ये जो प्रोग्राम का ये गाना जो लगा है, ये प्रोग्राम का लास्ट ब्रेक होने वाला है और इसी के साथ साथ हमारे जाने का वक्त भी बिल्कुल करीब आ चुका है। आपके इतने सारे फीडबैक अभी भी रहते हैं तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो हमें मैसेजेस करते हैं और आप टाइम निकाल कर हमारा शो भी सुनते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करने वाले, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो जल्दी से करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, हर तरह से आपकी स्किन का ख्याल रखते हैं, हर तरह से आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करते हैं और हर तरह से आपकी खूबसूरती को बहाल करते हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको हर तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप परचेज कीजिए, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा।

क्या बात है, तेरी अली मुर्तजा मसरूफ है, पता नहीं कहाँ मुझे यहीं पर नजर आता है और कहीं नहीं नजर आता, सच्ची बताए एनो मसरूफ मानू। अच्छा किशोर भाई कहते अदा अगर मुझो को कमेंट रीड न था थियन अल्लाह पो फील थींदो आ मु कुछ गलत चयो आ पो मुझा कमेंट न तवा जो कमेंट मुखे मिलियो कोने को जेके मिलिया तो आओ शामिल करे वरता अथस। नाराज़ कीजिए का गाल कोने का, शायद तुम्हारे जो कमेंट एडी ओडी थी वया हुंदा, मां दिसन या त ता खबर आ मां पड़ी वठंदी आ। नाराज़ न थियो बाबा, ई पाण में ते चार पंज सिर आयो, ये भी नाराज़ी नास ते कम की हलंदो। तुजी मुजी सो मोहब्बत आमिर खान महेश्वर भाई हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहा जाता है, और नजीबुल्ला बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको। दर्दे दिल कहती है चंदा तुम्हारी दोस्त के साथ ये सीन है, आगे कहीं अल्लाह ना करे। और कहती मीरपुर खास पर सही नहीं चल रहा आपका शो, आवाज कम आ रही, मीरपुर खास वालों सही चलाया करो प्रोग्राम। उनका अलावा प्रीतो भाई हाँ नहीं कर रही ना, वो बहुत जिद्दी है। अच्छा स्वीटी आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। चाचा खालिद कहती आज का शो बहुत अच्छा था, थैंक यू चाचा। सादिया बहुत शुक्रिया आपका। सुमाटो गोपांग आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। निदली कहती पप्पो को बस एक ही वोट मिला है, हाँ ना। अब आप

हा भाई तव्हां सभिनी त मामू मामू सिलेक्ट कयो. साइमा चयो त बाबा छो पुफो वीचारी खे हिकिड़ो बि वोट न मिलियो. साइमा मीर जेको आहे न पुफो खे वोट ॾेई छॾियो. हिकिड़ो पर दम त आहे. जी और हे वासु भाई हमारे साथ लास्ट में आए हैं. वेलकम करते हैं वासु भाई आपको भी. और दिया क्या कहती है, आपका नाम आपके वालदे ने सही रखा है सिद्रा मुस्कान. आपकी मुस्कान हमेशा यूं ही कायम रहे. आमीन. थैंक यू सो मच दिया. बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने प्यारे प्यारे लोग प्यारे प्यारे पॉजिटिव से कॉमेंट्स करते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह पाक आपको भी हमेशा ऐसे मुस्कुराता रखे. याद रहे, आबाद रहे और हमारे साथ रहे. अच्छा मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आबाद से. थैंक यू. न मूंखे लॻे नथो त आउं नाराज़ आहियो, पर मां चाहियां थी तव्हां नाराज़ थियो बि न. बसि तव्हां वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कंदा रहो ऐं सुहिणा सुहिणा थींदा रहो. सो बिल्कुलु हिते ई तव्हां खां इजाज़त वठूं था. वरी हिन सां तव्हां सां मुलाक़ात मुंहिंजी थिए पई 5 बजे वारे प्रोग्राम में. सो पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा. किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था. जंहिंजो फीडबैक रहिजी वियो आहे, गाना रहिजी विया आहिनि, सभिनी खां माज़रत कयूं था. सो मोकिलाणी नाहे बाबू सां सलामत सां सलामत. अलाह हाफ़िज़. बाय. लव यू ऑल एंड टेक केयर.

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिया मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: सिंध में एड्स वबा की सूरत इख्तियार करण लगी। सकरण भरसा एक गोठ में एड्स जा वी केस जाहिर थियण बाद इलाके में खौफ की लहर छायल। एड्स में मुबतला बिन बारन जे फौत थियण जी भी तस्दीक। सेहत खातो मुतासिर माण्हुनि खे आगाही ॾियण बाद एड्स जा केस लिकाइण लॻो। गोठ रहमो केयो में मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी चकास लाइ सिहत खाते पारां लॻायल कैंप में एड्स जे मरीज़नि जो इंकशाफ़ थियो। ॻोठाणनि मूजिब एड्स में वरतल माण्हुनि में ॿार, औरतूं ऐं नौजवान शामिल आहिनि। सिहत खातो इलाज जूं सहूलियतूं ॾियण लाइ बि तयार न आहे। ॻोठ 5000 आबादीअ ते वधल आहे। रुगो कुझु माण्हुनि जी टेस्ट थी आहे। समूरे ॻोठ जी स्क्रीनिंग करे मुतासिर मरीज़नि खे इलाज जी सहूलियत ॾिनी वञे। पीपल्स पार्टी वफ़ाक में साॻी पघार ते कम कंदी रहंदी। उबती ॻणप कंदड़नि जी ॻणप ऐं पाण बेसिधा थी वेंदा। अवाम पाकिस्तान जो मालिक आहे। कश्मीर ऐं पाकिस्तान जे तालुक खे केर बि ख़तम नथो करे सघे। पाकिस्तान कश्मीर खां सवाइ मुकमिल नाहे। कश्मीर में ईंदड़ हुकूमत नवाज़ लीग जी हूंदी। आज़ाद कश्मीर जे शहर बाग में चूड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउला चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत लाइ सादी अक्सरियत हासिल करे वरिती आहे। ॿ भाङे टे जी अक्सरियत लाइ रुगो 6 सीटूं घुर्बल आहिनि। जेके बि खटे वठंदासीं पीपल्स पार्टी जिता हाराईंदी। धांधलीअ जो इल्ज़ाम लॻाईंदी आहे। आज़ाद कश्मीर जे मसलनि खे हुकूमत ठाहिण बाद तरजीह बुनियादनि ते हल कयो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब जो दौरो मुकमिल करण बाद वापसि ॾेह रवानो। वज़ीर आज़म खे मदीने जे गवर्नर एयरपोर्ट ते अलविदा कयो। वज़ीर आज़म ॾेह रवानगीअ खां पहिरीं वफ़द सां गॾु मस्जिद नबवी में हाज़िरी भरी ऐं रियाज़ुल जना में नफ़िल पढ़िया। शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल ते हाज़िरी भरे ज़ियारत जी सआदत बि हासिल कई। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया विच में थियल टे मुल्की दिफ़ाई मुआदे खे मुल्की तारीख़ जी अहम कामयाबी करार ॾेई छॾियो। मका दिफ़ाई मुआदे खे मुमकिन बणाइण ते वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जी साराह। बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त दिफ़ाई मुआदो पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल जी ज़मानत आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके में खारजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द मारिजी विया। फायरिंग जी ॾेवट में पाक फ़ौज जो कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो। ISPR मूजिबि दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारे इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो। कार्रवाई दौरान 7 दहशतगर्द मारिजी विया। फायरिंग जी ॾेवट में कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं घरू मोहसिन नकवी पारां शहीद कैप्टन हमज़ा अकराम खे भेटा पेश कई। सदर चयो त क़ौम बहादुर पुटनि जे क़ुर्बानीनि जी कर्ज़ी आहे। शहबाज शरीफ चयो त क़ौम शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जी थोराइती आहे। दहशतगर्दनि खे ख़तम कयो वेंदो। ईरान जंग जारी रखण जी पोज़ीशन में नाहे। आबन हरमुज़ बि जल्द खुली वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान वटि मुआदे खां सवाइ ॿियो को गस नाहे। ईरानी सदर मसूद पज़िशान चयो आहे त ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ खां पोइ ते न हटंदो। जंग बदिरां ॻाल्हियुनि ज़रिए हक़ हासिल करणु चाहियूं था। कराची जे नौजवान मीर रज़ा जे मौत जो कारण मालूम करण लाइ क़बर कुशाई मढ़ जा जुज़ा वरिता विया। मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त मेडिकल बोर्ड जी जोड़ जक मां मुतमिन आहियूं। वकील जिबरान नासिर चयो त मामले में असांजी ॻाल्हि ॿुधी वई आहे। उमीद आहे त शाम 6 वॻे ताईं समूरनि सवालनि जा जवाब मिली वेंदा। कानपुर शहर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि 3 ॿार फौत। 7 बेहोश। गुलज़ार कुरेशी जे घर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि 10 भाती बेहोश थिया। इलाज दौरान 5 वरनि जो ज़ैन कुरेशी ऐं 3 सालनि जी गुलज़ेब ऐं नींगरी मुस्कान फौत थिया। गुलज़ार कुरेशी दिलावर महानूर ऐं ॿियनि जो शिकारपुर में इलाज जारी। मुतासिर गुलज़ार कुरेशी मूजिबि घर में पचायल छोला चांवरनि वारी बिरयानी खाइण बाद घर भातियुनि जी हालत ख़राब थी पई। उल्टियूं ऐं मोशन थियण बाद बेहोश थिया, जंहिं में 3 ॿार बि फौत थिया आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज़। GAFM 88 की आवाज़।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली,
6: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अना भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: पहचो शहर, पहचो घर, सकरण आए सकरण जो आवाज
3: GFM 90.8।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज।
0: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इंतजामिया जिले की का भी माना अस न आई है वाकई मसलो थो या न थो
2: तो बाबा इन मामले नोटिस वरतो ये तमाम सीरियस मसलो आ ही तेजी से फैलजे पी ब महीना पे अठ बह मरीज अच्छा ही हुआ तो बह हजार निकता है बिन दिन में तो समझो तो रेशो वे तो बिल बसों में निकता
3: सिंध में एड्स वबा की सूरत इख्तियार कर लगी साहे गोठ में एड्स जहा वी केस जाहिर थियण बाद इलाके में खौफ की लहर छायल एड्स में मुबतला बिन बारन के फोत थियण की भी तस्दीक सेहत खातों मुतासिर मानून के आगाही देने बाद एड्स जहा केस लिकायण लगो गोठ रहमू किरियो में मुख्तलिफ बीमारियों की चकास लाए सेहत खाते पारा लगायल कैंप में एड्स के मरीजन इंकशाफ थो है गोठान मूजिब एड्स में वरतल मानून में बार औरतू ए नौजवान शामिल हैं सेहत खातों इलाजू सहूलतू लेण लाए भी तैयार ना है गोठ 5000 आबादी ते बदल है रुगो कुछ मानून की टेस्ट थी है समूरे गोठ की स्क्रीनिंग करे मुतासिर मरीजन के इलाज की सहूलत दिनी वे पीपल्स पार्टी वफाक में सागी पगार ते कम कंदी रहंदी उबती गणप कंदड़न जी गणप ए पान बे सिदा थी वींदा अवाम पाकिस्तान जो मालिक है कश्मीर ए पाकिस्तान के ताल्लुक के केर भी खत्म न तो करे सके पाकिस्तान कश्मीर का सिवाय मुकम्मिल ना है कश्मीर में ईंदड़ हुकूमत नवाज लीग जी हूंदी आजाद कश्मीर के शहर बाग में चूंड जलसे के खिताब कंदे राणा सनाउला चयो आहे त आजाद कश्मीर में हुकूमत लाइ सादी अक्सरियत हासिल करे वरती आहे ब भाङे टे जी अक्सरियत लाइ रुगो छह सीटू घुर्बल आहिनि जेके बि खटे वठंदासीं पीपल्स पार्टी जितां हाराईंदी धांधली जो इल्ज़ाम लॻाईंदी आहे आज़ाद कश्मीर जे मसलनि खे हुकूमत ठाहिण बाद तरजीह बुनियादनि ते हल कयो वेंदो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब जो दौरो मुकमिल करण बाद वापस ॾे रवानो वज़ीर आज़म खे मदीने जे गवर्नर एयरपोर्ट ते अलविदा कयो वज़ीर आज़म ॾे रवानगी खां पहिरीं वफ़द सां गॾु मस्जिद नबवी में हाज़िरी भरी ऐं रियाज़ुल जना में नफ़िल पढ़िया शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल ते हाज़िरी भरे ज़ियारत जी सआदत बि हासिल कई पीपल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया विच में थियल ट्रिप मुल्की दिफाई मुआहदे के मुल्की तारीख की अहम कामयाबी करार दई छो मक्का दिफाई मुआहदे के मुकम्मिल बनाइण ते वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जी सारा बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त दिफाई मुआहदो पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल जी ज़मानत आहे सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके में खारजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन 7 दहशतगर्द मारिजी विया फायरिंग जी ॾे वठि में पाक फ़ौज जो कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो ISPR मूजिबि दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारे इलाइक़े ते इतलाह ते ऑपरेशन कयो वियो कार्रवाई दौरान 7 दहशतगर्द मारिजी विया फायरिंग जी ॾे वठि में कैप्टन हमज़ा अकराम शहीद थी वियो सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं घरू मोहसिन नक़वी पारां शहीद कैप्टन हमज़ा अकराम खे भेटा पेश सदर चयो त क़ौम बहादुर पुटनि जी क़ुर्बानीनि जी कर्ज़ी आहे शहबाज शरीफ चयो त क़ौम शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जी थोराइती आहे दहशतगर्दनि खे ख़तम कयो वेंदो ईरान जंग जारी रखण जी पोज़ीशन में नाहे आपना हरमुज़ बि जल्द खुली वेंदो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान वटि मुआहिदे खां सवाइ ॿियो को गस नाहे ईरानी सदर मसूद पज़ीशान चयो आहे त ईरान पंहिंजे मौक़िफ़ खां पोइते न हटंदो जंग बदिरां ॻाल्हियुनि ज़रिए हक़ हासिल करणु चाहियूं था कराची जे नौजवान मीर रज़ा जे मौत जो कारण मालूम करण लाइ कबरकुश आई मढ़ जा जुज़ा वरिता विया मीर रज़ा जे वालिद मीर हसन चयो आहे त मेडिकल बोर्ड जी जोड़जक मां मुतमिन आहियूं वकील जबरान नासिर चयो त मामले में असांजी ॻाल्हि ॿुधी वई आहे उमीद आहे त शाम 6 वॻे ताईं समूरनि सवालनि जा जवाब मिली वेंदा खानपुर शहर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण बाद 3 बार फोत 7 बेहोश गुलज़ार कुरेशी जे घर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि 10 भाती बेहोश थिया इलाज दौरान 5 वरनि जे ज़ैन कुरेशी ऐं 3 सालनि जो गुलज़ेब ऐं नींगरी मुस्कान फोत थिया गुलज़ार कुरेशी दिलावर मानूर ऐं ॿियनि जो शिकारपुर में इलाज जारी आहे मुतासिर गुलज़ार कुरेशी मूजिबि घर में पचायल छोला चांवरनि वारी बिरयानी खाइण बाद घर भातियुनि जी हालति ख़राब थी उल्टियूं ऐं मोशन थियण बाद बेहोश थिया जंहिं में 3 बार बि फोत थिया आहिनि पंजाब जे शहर लाहौर में बरसाति बाद रोड रस्ता पाणी हेठि अंडर पासिस बि बरसाती पाणीअ सां भरिजी विया शहर जे हेठां वारनि इलाइक़नि में बि गोॾे जेॾो पाणी बीठल सिंध समेत समूरे मुल्क में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स जो मसलो हल न थियण ते सीएम हाउस डां मार्च करण जो ऐलान। गुड ट्रांसपोर्टर जो चवण आहे त हड़ताल सबब थींदड़ नुकसान जे जिम्मेवार वफाक ऐं सूबाई हुकूमतूं हूंदियूं। ॻाल्हियुनि जा दर बंदि नाहिनि कया, मसला हल न थिया त धरणो हयो वेंदो। सिंधू दरिया में चाढ़ बावजूद सूबे में पाणी जी खोट बरकरार। मुख़्तलिफ़ शहरनि में आबादकारनि जा पाणीअ खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा। शादात कोट में सैफुल्ला मंसी ब्रांच मां निकरंदड़ गंदा खार राइट माइनर जे आबादकारनि जो सड़ियल बिजारो खणी एहतजाज। सिंध बलूचिस्तान जे जमाली रोड वारी पुल ते धरणो। फसल पचाइण लाइ पाणी ॾियण जो मुतालबो।
0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: Brought to you by
5: Sona Urea Granular, mitti jo maan vadhai. Sona Urea Granular, jadid technology sa taiyar kayal, aala mayar jo Sona Urea. Sona Urea Granular, mitti jo maan vadhai.
6: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 network. GFM 88 network. Sindh ki aawaz.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: It's 4:15 PM.
2: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
0: सुनते रहो GFM 90.8।

0: मिटीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिटीअ जो मान वधाए
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: con Health Department jo ko pinmai do intizamiya zile ji ka mana asan na aya da waqai maslo thyo aya na thyo
1: to baba in mamle notice ho to ye tamam serious maslo wa ye tezi sa pen je pai jab mena peri de yath da mari de chai de ho to ba ye nikta rahe bin nian me kasam de re shwad de bin bas ma ba nikan
0: अच्छा जी मैं कोटियां में इलाज वगैरह कौन थे ऑन स्क्रीन बच्ची एक खबर तो पेजी है तो ऐसे ही पाजे तो ये पर असर साथ ही उन्होंने तवज्जो न दी जिन्हें कर बारे में कोई बच्ची
2: सिंध में एच आई वी वबा की सूरत अख्तियार कर लगी सकरण भरसा एक गोठ में एच आई वी जहा वी केस जाहिर थे बाद इलाके में खौफ एच आई वी में मुबतला बिन बार के फोत थे भी तस्दीक सेहत खातों मुतासर मान के आगाही दियण बाद एड्स जहा केस लिखा लगो गोठ रहे मुनकरियों में मुख्तलि बीमार की चकास लाए सेहत खाते पारा लगायल कैंप में एड्स के मरीजों को इंकशाफ थो गोठाणन मूजिब एच आई वी में वरतल मानून में बार औरतू और नौजवान शामिल हैं सेहत खातों इलाज जो सहूलतों देने लाय भी तैयार ना है गोठ 5000 आबादी से बतल है रुगो कुछ मानून की टेस्ट की है समूरे गोठ की स्क्रीनिंग करे मुतासर मरीजन के इलाज की सहूलत देनी वने
3: और ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी
2: उगती गणप कन्डन की गणप पान पी सीधा थी वा पीपल्स पार्टी पाक में सागे पगार से कम कंदी रही अवाम पाकिस्तान जो मालिक है कश्मीर ए पाकिस्तान के ताल्लुक के केर भी खत्म न तो कर सके पाकिस्तान कश्मीर का सिवाय मुकम्मल ना है कश्मीर में इंदड़ हुकूमत नवाज लीग की होंगी आजाद कश्मीर के शहर पाक में चूंड जलसे के खिताब कदे राणा सनाउल्लाह आजाद कश्मीर में हुकूमत लाए सादी अक्सरियत हासिल कर वरती है ब भाग्य टे की अक्सरियत लाए रुगो छह सीटू घुर्बल हैं जे भी खटे वेठासी पीपल्स पार्टी जिता हाराइंदी धांधली जो इल्ज़ाम लगाई है कश्मीर जा मसला हल कंदासी।

वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब जो दौरो मुकमल करण बाद डेह पहुंची वो वज़ीर आज़म के मदीने के गवर्नर एयरपोर्ट से अलविदा कयो हो। वज़ीर आज़म ने रवानगी का पहरी वफद से गड मस्जिद नबी में हाजिरी भरी और रियासुल जन्ना में नफिल पढ़िया। शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल से हाजिरी भरी ज़ियारत की सआदत भी हासिल कई। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्की विच में थियल टे मुल्की दिफाई माहदे के मुल्की तारीख की अहम कामयाबी करार दई छो। मक्का दिफाई माहदे के मुमकिन बनाने से वज़ीर आज़म ए फील्ड मार्शल की सारा। लाल भुट्टो ज़रदारी दिफाई माहदो पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्की के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। अमरीका पारा समूरा शर्त तस्लीम करण बाद ही अपना हरमुस खुलंद। ईरानी पासदार इनकलाब है अपना हरमुस असा लाए रुगो आप ही रस्तों पर ताकत ए कुत जो जरियो है। अपना हरमुस से उमान से गाल आखिरी मरहल में आन मुदाखलत जहा नतीजा खराब निकरंदा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामदाई के सलाहकार अली अकबर विलायती है गैर मुल्की फौज के खिते में निकरी वजन घुर्जे खिते जहा मुल्क सरकार बताए सलामती यकीनी बनाए सकन था।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई
3: जिंदगी भर का

0: घाटी जा रंग रौनकू ए जरखेजी असाजे हारी साईं ताहिन आबाद हाने इन जो अन्याब वधिक मान वधाइण लाए तवा सा गड आए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ने नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर DFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध का हर चप्पा हर गोशा
0: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ए ज़रख़ेज़ी असां जे हारिय साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए सुबह की

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

रज़ालीअ खे गोली पुठियां लॻल आहे, जिस्म ते तशद्दुद जा निशान बि मौजूदु आहिनि। कराची जे नौजवान मीर रज़ा अलीअ जी शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छिरकाईंदड़नि खे साफ़ साम्हूं अची विया। मीर रज़ा अलीअ जी शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चयो वियो आहे त पुलिस सर्जन जी उथारियल 14 सवालनि जा जवाब मिली

0: کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ خود بھی سیدھے ہو جائیں گے، ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔
1: उबती गणप कंदड़न की गणप ए पान भी सिदा थी वेंदा। पीपल्स पार्टी वफाक में सागी ही पघार से कम कंदी रहंदी। अवाम पाकिस्तान जो मालिक है, कश्मीर ए पाकिस्तान जी तालुक के केर भी खत्म न तो कर सके। पाकिस्तान कश्मीर का सवाए मुकम्मल ना है। कश्मीर में ईंदड़ हुकूमत नवाज लीग की होंगी। आजाद कश्मीर के शहर बाग में चूंड जलसे के खिताब कंदे राणा सना उल्लाह जो चवण हो तो आजाद कश्मीर में हुकूमत लाए सादी अक्सरियत हासिल कर वरती है। ब भांगे टे की अक्सरियत लाए रुगो छह सीटों घुर्बल हैं जेके बे खटी वी। पीपुल्स पार्टी जिता हाराइंदी है दांधली जो इल्ज़ाम लगाइंदी है। कश्मीर जा मसला हल कंदासी। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब जो दौरों मुकम्मल करण बाद देह वापस पहुंची वो। वजीर आजम के मदीने के गवर्नर एयरपोर्ट से अलविदा कयो। वजीर आजम देह रवानगी का पेरी वफद से गड मस्जिद नबवी में हाजिरी भरी ए रियाजुल जना में नफिल भी पढ़िया। शहबाज शरीफ रोजा रसूल से हाजिरी भरे जियारत की सआदत भी हासिल कई। पीपी चेयरमैन पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया विच में थियल टे मुल्की दिफाई मुआदे के मुल्की तारीख की अहम कामयाबी करार दे छो। मक्का दिफाई मुआदे के मुमकिन बनाने से वजीर आजम फील्ड मार्शल की वाखाण। बिलावल भुट्टो चयो तो दिफाई मुआदो पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्किया की महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। ओमान से मुआदे के वेझो पहुंची वाया। मुआदे जो मतलब आबनाए हुरमज जो खुलन न हों। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची चाहिए तो आबनाए हुरमज में बहरी जहाजन की लंग ए इंतजाम बाबत ओमान से गाल आखिरी मरहले में दाखिल थी व्यू हैं। आबनाए हुरमज जो खुलन कुछ बेन शर्त से भी गंढियल है। इस्लामाबाद मफाहमत नामे में भंजकड़न से डंड वो मामलो भी शामिल है। पासदारान इनकलाब अमरीका पारा समूरा शर्त तस्लीम कर बाद ही आबनाए हुरमज खुल। सिक्योरिटी फोर्सिस जो खैबर पख्तूनख्वा में खारजी दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन सत दहशतगर्द मारजी वया। अंगू में फायरिंग की डेवट में पाक फौज जो कैप्टन हमजा इकराम शहीद थी वो। ISPR मूजिब दहशतगर्दन की मौजूदगी वाले इतला से ऑपरेशन किया वो। कार्रवाई दौरान सत दहशतगर्द मारिया वया। फायरिंग की डेवट में कैप्टन हमजा अकरम शहीद थी वो। सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम ए घरू वजीर पारा शहीद कैप्टन हमजा इकराम के भेटा पेश। सदर चो तो कौम बहादुर पुटन की कुर्बानी की कर्जी है। वजीर आजम जो चवण हो तो कौम शहीदन ए गाजन की थुराती है। दहशतगर्दन के खत्म किया वो। वडे वजीर सैद मुराद अली शाह की सदारत हेठ 12 रबी लवल की तैयारियों बाबत मजहबी आलमन जो अहम इजलास। वडे वजीर पारा 12 रबी लवल के मौके से सूबे में सिक्योरिटी का इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह चो तो मजहबी हम आहंगी में आलमन जो किरदार साराह जोगो है। रेलन बाबत मसला जल्द हल कया वन। सिंध एक्शन कमेटी सिंध की वहदत ए खुदमुख्तियारी के तहफुज लाए मजामत जो ऐलान कंदे 22 अगस्त से हैदराबाद में अवामी एहतजाज जो सद दे छो। जामशोरे में सिंध एक्शन कमेटी के इजलास सिंध की वहदत पानी मैदनियात जमीन ने माली खुदमुख्तियारी समेत मुख्तलिफ मामलों से गौर वीचार किया वो। नवन सूबन बाबत घरू वजीर मोहसन नकवी के बयान की भी मजम्मत। 28 आइनी तरमीम सिंध की वहदत वसीलन ए सूबाई खुदमुख्तियारी लाए खतरो करार। इम्कानी तरमीम के फौरी तौर से वापस वठण जो मुतालबो। अगवाणन चयो तो सिंध 6 करोड़ सिंधियों जो तारीखी वतन है जैसी वहदत से को भी वार कबूल न किया वो। सिंध असेंबली नवन सूबन खिलाफ 20 ठहराव मंजूर करे। सिंध एक्शन कमेटी पारा 26 ए 27 आइनी तरमीम के खत्म कर शफाफ चूडू कराने जो भी मुतालबो किया वो।
2: हेल्थ डिपार्टमेंट जो को भी नुमाइंद इंतजामिया जिले की का भी माना अस न आई है तो वाकई मसलो थो या न थो
3: तो बाबा इन मामले नोटिस वो ये तमाम सीरियस मसलो आ ही तेजी से फैलजे पी जो महीना पैरी जो अठ बह मरीज चाहिए हुआ तो बजार निकता है बिन दिन में तो समझो तो रेशो वे तो बिल 200 में निकता है।
4: इलाज वगैरह को
1: सिंध में एचआईवी वबा की सूरत अख्तियार कर लगी। सकरण वेझो एक गोठ में एचआईवी जा 20 केस जाहिर थियण बाद इलाके में खौफ छायल। एचआईवी में मुब्तला बिन बारन की फौत थियण की भी तस्दीक। सेहत खातो मुतासर माण्हुनि खे आगाही ॾियण बाद एड्स जा केस लिकाइण लॻो। फोर्ट रामू गीरियो में मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी चकास लाइ सिहत खाते पारां लॻायल कैंप में एड्स जे मरीज़नि जो इंकिशाफ़ थियो। ॻोठाणनि मूजिबि एचआईवी में वरितल माण्हुनि में ॿार, औरतूं ऐं नौजवान शामिल आहिनि। सिहत खातो इलाज जूं सहूलियतूं ॾियण लाइ बि तयारु न आहे। ॻोठ 5000 आबादीअ ते ॿधल आहे। रुॻो कुझु माण्हुनि जी टेस्ट थी आहे। समूरी ॻोठ जी स्क्रीनिंग करे मुतासिर मरीज़नि खे इलाज जी सहूलियत ॾिनी वञे। पाकिस्तान में हलंदड़ हफ़्ते महांगाई जी शरह में 9% खां वधीक वाध रिकॉर्ड। पचाइण वारो तेल, गेह, खीर जो वॾो तादाद गैर मयारी हुअण जी बि तस्दीक। मनसूबाबंदीअ वारी वज़ारत पारां जारी कयल रिपोर्ट में चयो वियो आहे त मुल्क मां पचाइण वारी तेल, गेह ऐं खीर जा 491 नमूना गॾु करे चेक कया विया आहिनि, जिन मां 176 नमूना घुरिबल मयार ते पूरा नाहिनि लथा। गेह जी 204 नमूननि मां 98 मयार ते पूरा न लथा। कुकिंग ऑयल जा 40, खीर जा 26 ऐं मिल्क पाउडर जा 18 नमूना गैर मयारी निकिता। कानपुर शहर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि 3 ॿार फ़ौत, 7 बेहोश। गुलज़ार कुरेशीअ जे घर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि 10 भाती बेहोश थी विया। इलाज दौरान 5 वरनि जो ज़ैन कुरेशी ऐं 3 वरनि जो गुलज़ेब ऐं निंगरी मुस्कान फ़ौत थिया। गुलज़ार कुरेशी, दिलावर, महानूर ऐं ॿियनि जो शिकारपुर में इलाज जारी। मुतासिर गुलज़ार कुरेशी मूजिबि घर में पचायल छोला चांवर वारी बिरयानी खाइण बाद घर भातियुनि जी हालति ख़राबु थी वई। उल्टियूं ऐं मोशन थियण बाद बेहोश थी विया, जंहिंमें 3 ॿार फौत थिया आहिनि। हैदराबाद में क़ौमी अवामी तहरीक पारां अयाज़ लतीफ़ पलीजो जी FIA में तलबी ख़िलाफ़ एहतजाज। कारकुननि रैली कढी, प्रेस क्लब आॾो एहतजाज कयो। मलीर में बि क़ौमी अवामी तहरीक जो गगर फाटक ते धरणो। अॻवाननि जो चवणो हो त सिंध टोड़ण जी साज़िशनि ख़िलाफ़ अवाम खे बेदार करण जी ॾोह में अयाज़ लतीफ़ खे नोटिस जारी कयो वियो आहे। सिंध समेत समूरी मुल्क में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जी हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स जो मसला हल न थियण ते CM हाउस ॾांहुं मार्च करण जो बि ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो चवणु आहे त हड़ताल सबबि थींदड़ नुक़सान जी ज़िमेवार वफ़ाक ऐं सूबाई हुकूमतूं हूंदियूं। ॻाल्हियुनि जा दर बंदि न आहिनि कया, मसला हल न थिया त धरणो हयो वेंदो। मोरो वेझो नौजवान औरत मुबैना तौर ते गोलियूं हणी क़तल। ॻोठ जंगू लगारीअ में 18 वरनि जी रिहाना लिगारीअ खे मुबैना तौर अगवाबाद वापसीअ ते क़तल कयो वियो। मक़तूल औरत जे वालिद जमाल लिगारी जो चवणु हो त कुझु वक़्तु पहिरियां वसीम धीअ खे अगवा करे वियो हो। पाक किताब ते धीअ वापसि ॾिनी वई। अॼु सुबुह वसीम अबड़ो हथियारबंद माण्हुनि सां गॾिजी घर अंदरि दाख़िल थी धीअ खे पिस्टल जा फायर करे क़तल कयो। पुलिस इतलाउ बावजूदि कार्रवाई नाहे कई। इंसाफ़ कयो वञे। राधण वेझो शाह 5 पुलिस जी हिरासत में। नौजवान ताहिर जोड़े जो जी फौत थियण वारे वाक़े में SHO समेत 3 अहलकार मुअतल। SSP दादू शाह 5 थाणे जे SHO रसूल बख़्श पांवर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अहमद सोलंगी ऐं सिपाही मुर्तज़ा मक्सीअ खे मुअतल करे छॾियो। वाक़े जो केस दाख़िल न थियो। ताहिर जोड़े जो जी बेवाह सूंह जोड़े जो इल्ज़ाम लॻायो आहे त संदसि मुड़ुस जे क़तल में शाह 5 जूं ॿ सरधुरियूं SHO ऐं पुलिस अहलकार मुलविस आहिनि। मीरपुर ख़ासि जेल में पुरस्कार नमूने फ़ौत थियल क़ैदी जे वारसन उॾेरो लाल प्रेस क्लब आॾो एहतजाज। पुलिस ते क़तल करण जो इल्ज़ाम। वारसन इल्ज़ाम मढ़ियो त अली शेर खे पुलिस जेल में तशदुद करे क़तल कयो। मामले जी जाच करे इंसाफ़ कयो वञे। उॾेरो लाल वासी अली शेर खोसो मीरपुर ख़ासि जेल में पुरस्कार नमूने फ़ौत थी वियो हो। पुर में RTA सेक्रेटरीअ जो वैन क्लीनर ते तशदुद, चमाटू हणण वारी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल। वीडियो में ॾिसी सघिजे थो त रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खैरपुर जो सेक्रेटरी रियाज़ सोलंगी वैन क्लीनर ज़रीफ़ गोपांग खे चमाटू हणी रहियो आहे। सुञाण धुरनि पारां वाक़े जी मज़म्मत।

0: जेको जिश्ने आज़ादी जूं तयारियूं ज़ोर शोर सां जारी आहिनि
1: ऐं असांजे लाइ तमामु वॾो ॾींहुं आहे असां 14 अगस्त खे
0: पंहिंजी कंट्री खां वञी ॿिए कंट्री में शिफ्ट थींदो न त अव्हां ते पोइ अहसासु थींदो त असांजो मुल्क आज़ादु आहे ऐं असांजी आज़ादी

0: आज़ादी जो ॾियारो वॾे दिलि जयानो पुरुष मल्हाए रहिया आहियूं असां आज़ाद आहियूं ख़ुदमुख़्तियार मुल्क क़ौम आहियूं
1: पर साल खां दौरो
2: चोॾहं अगस्त जे ॾियारो असां माण्हुनि जे लाइ ईद खां घटि न आहे
3: जंगियुनि खां सिंगारनि खां सॼो माना ख़ुशी जो त्योहार आहे इहो असांजो आज़ादी जो
4: ऐं सिंध समेत मुल्क में जश्न आज़ादीअ जूं तयारियूं तेज़ थी वियूं क़ौमी परचमन ऐं बेजिस जो विकिरो वधी वियो स्टार बि लॻायो वियो
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
7: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: It's 8:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।

0: जो रिपोर्ट मिलेगी वो सबके सामने। हमें कोई घोषणा पहले की हमने
1: कराची के नौजवान व्यापारी मीर रजा के गोली पुठियां लगन जिस्म ते तशद्दुद जे निशानन जो इंकशाफ कबर कुशाई का शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जा तफसील सामू अची वया। शुरुआती रिपोर्ट में मीर रजा जो पसराटू बे भगल होने की तस्दीक जांच की रोशनी जो दायरो वधाने जो इम्कान। जरीन जो चवना है मीर रजा की कबर कुशाई दौरान 17 सैंपल्स महफूज किया वह हुआ। मेडिकल बोर्ड जा मेंबर मजमू तौर से 19 सैंपल्स की जांच कंदा। केमिकल एग्जामिन डीएनए रिपोर्ट्स की रिजल्ट का 4 दिन अंदर अचान इम्कान। वकील जिब्रान नासिर जो चवना है पुलिस मीर रजा के वारसन के हिरासा कर रही है। यह एक नौजवान जो कत्ल है। पुलिस जांच नथी चाहे।

0: جینا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ خود بھی سیدھے ہو جائیں گے، ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔
1: उपती गणप कदड़न जी गणप आए पाड़ पिसदा थी वेंदा। पीपल्स पार्टी वफाक में सागी पगार ते कम कंदी रहंदी। अवाम पाकिस्तान जो मालिक आहे। कश्मीर ऐं पाकिस्तान जे ताल्लुक खे केर भी खत्म नथो करे सघे। पाकिस्तान कश्मीर खां सवाइ मुकमल आहे। कश्मीर में ईंदड़ हुकूमत नवाज लीग जी हूंदी। आज़ाद कश्मीर जे शहर बाग में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनाउल्ला चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत लाइ सादी अक्सरियत हासिल करे वरिती आहे। भाॻे टे जी अक्सरियत लाइ रुगो छह सीटूं घुर्बल आहिनि जेके बि खटी वठंदासीं। पीपल्स पार्टी जितां हाराईंदी धांधलीअ जो इल्ज़ाम लॻाईंदी आहे। कश्मीर जा मसला हल कंदासीं।
2: ओमान सां मुआदे जे वेझो पहुची विया आहियूं। मुआदे जो मतिलबु आबनाह हुर्मुज़ जो खुलण न हूंदो। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास राक्ची जो चवणो हो त आबनाह हुर्मुज़ मां बहरी जहाज़नि जी लंघ ऐं इंतज़ामनि बाबति ओमान सां ॻाल्हियूं आख़िरी मरहले में दाख़िल थी वियूं आहिनि। आबनाह हुर्मुज़ जो खुलण कुझु ॿियनि शर्तनि सां बि ॻंढियल आहे। इस्लामाबाद मफ़ाहमत नामे में भञकड़ियुनि ते ॾंढ वारो मामिलो बि शामिल आहे। पाकिस्तान इनकलाब चयो आहे त अमरीका पारां समूरा शर्त तस्लीम करण बाद ई आबनाह हुर्मुज़ खे खोलियो वेंदो।
1: सिक्योरिटी फोर्सिस जो ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में ख़ारजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द मारिजी विया। अंगू में फायरिंग जी ॾे वठ में पाक फ़ौज जो कैप्टन हमज़ा इकराम शहीद थी वियो। ISPR मूजिब अंगू में दहशतगर्दनि जी मौजूदगी वारी इतला ते ऑपरेशन कयो वियो। कार्रवाई दौरान 7 दहशतगर्द मारिजी विया। फायरिंग जी ॾे वठ में कैप्टन हमज़ा इकराम शहीद थी वियो। सदर आसिफ अली सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां शहीद कैप्टन हमज़ा इकराम खे भेटा पेश। सदर चयो त क़ौम बहादुर पुटनि जी क़ुर्बानीनि जो कर्ज़ी आहे। शहबाज़ शरीफ चयो त क़ौम शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जी थोराइती आहे। दहशतगर्दनि खे ख़तमु कयो वेंदो।
2: अली वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि 12 रबी अल अव्वल जी तयारियुनि बाबति मज़हबी आलमनि जो अहम इजलास। अली वज़ीर पारां 12 रबी अल अव्वल जे मौक़े ते सूबे में सिक्योरिटी जा इंतज़ाम यकीनी बणाइण जी हिदायत। मुराद अली शाह जो चवणु हो त मज़हबी हम आहंगीअ में आलमनि जो किरदारु साराह जोॻो आहे। रेलियुनि बाबति मसला जल्द हल कया वञनि।
1: सिंध एक्शन कमेटी सिंध जी वहदत ऐं ख़ुदमुख़्तारी जे तहफ़ुज़ लाइ मुज़ामत जो ऐलान कंदी। 22 अगस्त ते हैदराबाद में अवामी एहतजाज जो सॾु ॾेई छॾियो। जाम शोरे में सिंध एक्शन कमेटी जे इजलास में सिंध जी वहदत, पाणी, मादनियात, ज़मीननि ऐं माली ख़ुदमुख़्तारी समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ग़ौर कयो वियो। नवनि सूबनि बाबति घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जे बयाननि जी मज़म्मत। 8 आइनी तरमीम सिंध जी वहदत वसीलनि ऐं सूबाई ख़ुदमुख़्तारी लाइ ख़तरो करार। इम्कानी तरमीम खे फौरी तौर वापसि वठण जो मुतालबो। अॻवाणनि चयो आहे त सिंध 6 करोड़ सिंधियुनि जो तारीख़ी वतन आहे, जंहिंजी वहदत ते को बि वार क़बूल न कयो वेंदो। सिंध असेंबली 9 सूबनि ख़िलाफ़ 20 ठहराउ मंज़ूर करे सिंध एक्शन कमेटी पारां 6 ऐं 27 आइनी तरमीमनि खे ख़तमु करण ऐं शफ़ाफ़ चूंडू कराइण जो बि मुतालबो कयो वियो।
3: हेल्थ डिपार्टमेंट जो को बि नुमाइंदो इंतिज़ामिया ज़िले जी का बि माना असां वटि न आई आहे त वाकई मसइलो थियो आहे या न थियो आहे।
4: त बाबा हिन मामले नोटिस वरितो, इहो तमामु सीरियस मसइलो आहे। ही तेज़ी सां फैलिजे पई, जे 2 महीना पहिरीं जे 8-10 मरीज़ अचा ई हुआ त 2000 निकिता आहे 2 ॾींहनि में, त सम्झो भई रेशो वधे थो, 200 मां 2 निकिता
5: आहिनि। इलाज वग़ैरह कोन थियो, हाणे स्क्रीनिंग थी वई, ख़बर त पइजी वई त हे शइ पॉज़िटिव आहे, पर तवजो न ॾिनो, जंहिंजे करे ॿारनि जी थोरी थी वई।
2: सिंध में HIV वबा जी सूरतहाल अख़्तियार करणु लॻी। सकरनि वेझो हिकु ई ॻोठ में HIV जा 20 केस ज़ाहिर थियण बाद इलाइक़े में ख़ौफ़ छायल। HIV में मुब्तला ॿिनि ॿारनि जी फौत थियण जी बि तस्दीक थी वई। सिहत खातो मुतासिर माण्हुनि खे आगाही ॾियण बाद एड्स जा केस लिकाइण लॻो। ॻोठ रहमू कीरियो में मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी चकास लाइ सिहत खाते पारां लॻायल कैंप में एड्स जे मरीज़नि जो इंकिशाफ़ थियो। ॻोठाणनि मूजिब HIV में वरितल माण्हुनि में ॿार, औरतूं ऐं नौजवान शामिल आहिनि। सिहत खातो इलाज जूं सहूलियतूं ॾियण लाइ बि तयारु न आहे। ॻोठ 5000 आबादीअ ते ॿधलु आहे। रुगो कुझु माण्हुनि जी टेस्ट थी आहे। समूरी ॻोठ जी स्क्रीनिंग करे मुतासिर मरीज़नि खे इलाज जी सहूलियत ॾिनी वञे।
1: पाकिस्तान में हलंदड़ हफ्ते महंगाई की शरह में 90% का वधीक वाध रिकॉर्ड। पचाइण वारो तेल के खीर जो वो तादाद गैर मयारी हुआ की भी तस्दीक। मनसूबा बंदी वाली वजारत पारा जारी कल रिपोर्ट में चाहिए मुल्क में पचाइण वारो तेल गे खीर जहा 491 नमूना गड कर चेक कया व्या जिन में 176 नमूना घुर्बल मयार से पूरा ना लथा। गे की 204 नमून में 98 मयार से पूरा न लथा। कुकिंग ऑयल जहा 40 खीर जहा 26 मिल्क पाउडर जहा 18 नमूना गैर मयारी निकता।
2: खानपुर शहर में मुबैना तौर जहरीलो खाधो खाने सबब 3 बार फौत 7 बेहोश। गुलजार कुरेशी के घर में मुबैना तौर जहरीलो खाधो खाने सबब 10 भाती बेहोश थी वया। इलाज दौरान 5 वरन जो जैन कुरेशी 3 वरन जो गुलजेब निगरी मुस्कान फौत थिया। गुलजार कुरेशी दिलावर मानूर बेन जो शिकारपुर में इलाज जारी। मुतासिर गुलजार कुरेशी मूजिब घर में पचायल छोला चावर वाली बिरयानी खाने बाद घर भातिन की हालत खराब थी वही। उल्टियों मोशन थे बाद बेहोश थे जैमें 3 बार भी फौत थिया।
1: हैदराबाद में कौमी अवामी तहरीक पारा यास लतीफ अली जो जी FIA में तलबी खिलाफ एहतजाज। कारकुनान दिल्ली कडी प्रेस क्लब आरो एहतजाज किया। मलीर में भी कौमी अवामी तहरीक जो गगर फाटक से धरणो। अगवान सिंध टोड़ने की साजिश खिलाफ अवाम के बेदार करने के दोह में अयाज लतीफ अली जो के नोटिस मोकलो वो है।

0: सिंध समेत समूरी मुल्क में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स जो मसला हल न थियण ते सीएम हाउस डां मार्च करण जो ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स जो चवण आहे त हड़ताल सबब थींदड़ नुकसान की जिम्मेवार वफाक ऐं सूबाई हुकूमतूं हूंदियूं। ॻाल्हियुनि जा दर बंद नाहिन कया, मसला हल न थिया त धरणो हयो वेंदो।
1: मोरो भरसां नौजवान औरत मुबैना तौर ते गोलियूं हणी कतल। घोट चंगू खान लगारी में 18 सालनि जी रिहाना लगारी खे मुबैना तौर अफ़ाफ़ात वापसी ते कतल कयो वियो। मक़तूल औरत जे वालिद जमाल लगारी चयो आहे त कुझु वक़्तु पहिरियां वसीम धीउ खे अगवा करे वियो हो। पाक किताब ते धीउ वापसि ॾिनी वई। अॼु सुबुह वसीम अबड़ो हथियारबंद माण्हुनि सां गॾिजी घर अंदरि दाख़िल थी धीउ खे पिस्टल जा फायर करे कतल कयो आहे। पुलिस इतलाउ बावजूदि कार्रवाई नाहे कई। इंसाफ़ कयो वञे।

0: गंभट वेझो जादो वाहण में हथियारबंदन की फायरिंग में नौजवान कतल। हथियारबंदन मर्द रोड से फायरिंग करे घोट दोदो चनो वासी असलम चने के कतल कयो। नौजवान पंजे बिरादरी से पुराने दुश्मनी तहत कतल थे जा चौबोल। अगड़ा पुलिस जो चवण है तो वाक्य जो कारण मालूम नहीं सको है, जांच कर रहा है।
1: हीपो खास जेल में पुरस्कार नमूने फोत थियल कैदी के वारिसन उदेरो लाल प्रेस क्लब आडो एहतजाज। पुलिस से कतल करण जो इल्ज़ाम वारिसन इल्ज़ाम आयो है त अली शहर के पुलिस जेल में तशद्दुद करे कतल कयो है। मामले की जांच कर इंसाफ कयो वने। उदेरो लाल वासी अली शहर कोसो मीरपुर खास जेल में पुरस्कार नमूने फोत थी वियो हो।
0: खैरपुर में आरटीए सेक्रेटरी जो वैन क्लीनर से तशद्दुद चमाटू हणण वाली वीडियो सोशल मीडिया से वायरल थी वही। वीडियो में दिसी सकजे तो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खैरपुर जो सेक्रेटरी रियाज सोलंगी वैन क्लीनर जरीफ गोपांक के चमाटू हणी रो है। सुजान धुरन पारा वाक्य की मजम्मत।

0: नगर नगर शहर शहर में जो जिश्रे आज़ादी जो तैयारियों जोर शोर से जारी
1: है लाइ तमाम वो चौदह अगस्त के समय ईदी बराबर समझा
2: तीन कंट्री का बे कंट्री में शिफ्ट थो न तो अवे एहसास मुल्क आज़ाद है। आजादी

0: आज़ादी जो ॾियारो वॾे दिल जयान पूरो समराए रहिया आहियूं असां आज़ाद आहियूं ख़ुदि मुख़्तियार मुल्क क़ौम आहियूं
1: अगस्त जे ॾियारो असां माण्हुनि जे लाइ ईद खां घटि न आहे जंगियुनि सां सिंगारनि सां सॼो माना ख़ुशी जो त्योहार आहे इहो असांजो आज़ादी जो
2: सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न आज़ादी जूं तयारियूं तेज़ थी वियूं क़ौमी परचमाने वेजिस जो विकिरो वधी वियो स्टॉल बि लॻाया विया

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।
3: हमने जिस हालत में बच्चे को देखा हम बस उस वक्त से कह रहे थे कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, इसको प्लीज इन्वेस्टिगेट कर दें। और आज भी हम यही कह रहे हैं कि आज ये दोबारा साबित हो गया कि मर्डर है, प्लीज इसको इन्वेस्टिगेट कर दें। किसने किया, क्या किया, हमें कुछ नहीं पता।
4: कराची के नौजवान व्यापारी मीर रजा के गोली पुठियां लगण ए जिस्म से तशद्दुद के निशान जो इंकशाफ कबर कुशाई का पोए शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जा तफसील सामू अची वया। शुरुआती रिपोर्ट में मीर रजा जो पासराठियों बे भगल होण की तस्दीक, जांच जो दायरो वधायण जो इम्कान। जरियन जो चवणा है त मीर रजा की कबर कुशाई दौरान 17 सैंपल्स महफूज किया व्या हुआ। मेडिकल बोर्ड जा मेंबर मजमूई तौर से 19 सैंपल्स की जांच कंदा। केमिकल एग्जामिन डीएनए रिपोर्ट्स की रिजल्ट का 4 दिन अंदर अचण जो इम्कान। वकील जिब्रान नासिर चयो है त पुलिस मीर रजा के वारसन के हिरासत करे रही है। ये एक नौजवान जो कतल है, पुलिस जांच नथी चाहे।

पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआहिदो पाकिस्तान में जश्न इस्लामाबाद खे टिन्ही मुल्कनि जे झंडनि सां सिंगारियो वियो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत टिन्ही मुल्कनि जे सरबराहनि जूं तस्वीरूं बि लॻल वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ बि तारीख़ी मुआहिदे ते सहियूं करण बाद डे पहुची वियो पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे सरबराहनि गुज़िरियल ॾींहं तारीख़ी दिफ़ाई मुआहिदे ते सहियूं कयूं हुयूं।

0: انشاءاللہ تعالی یہ خود بھی سیدھے ہو جائیں گے، ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی.
1: उबती गणपन की गणप ए पाण पी सिदा थी वा. पीपल्स पार्टी पाक में सागी पकार से कम कंदी रही. अवाम पाकिस्तान जो मालिक है. कश्मीर ए पाकिस्तान के तालुक केर भी खत्म न तो कर सके. पाकिस्तान कश्मीर का सिवाय मुकम्मल ना है. कश्मीर में ईंदड़ हुकूमत नवाज लीग की होंगी. आजाद कश्मीर के शहर बाग में चूंड जलसे के खिताब कदे राणा सनोला है तो आजाद कश्मीर में हुकूमत लाए सादी अक्सरियत हासिल कर वरती है. ब भांगे टे की अक्सरियत लाए रुगो छह सीटू घुर्बल जे भी कटे वी. पीपल्स पार्टी जिता हाराइंदी धांधली जो इल्जाम लगाई है. कश्मीर जा मसला हल कंदी.
2: उमान सा मुआदे के वेझो पहुंची वाया आयु. मुआदे जो मतलब आबनाह हुरमस जो खुलन न हों. ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची जो चवण हो तो आबनाह हुरमस में बहरी जहाजन की लंघ ए इंतजाम बाबत उमान से गाल आखिरी मरहले में दाखिल की व्यू. आबनाह हुरमस जो खुलन कुछ बेन शर्तन से भी गंढल है. इस्लामाबाद मफामत नामे में भंजकड़न से डंड वो मामलो भी शामिल है. पासदारान इनकलाब अमरीका पारा समूरा शर्त तस्लीम करण बाद ही आबनाह हुरमस खुलंदो.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.8।